प्रभात, आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज दिन रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 14, तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के ठीक 5:58 हो रहे हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रातःकालीन सभा। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है समाचार। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। ग्रामीण भाई बहनों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज हम बरसात वाली अरवी की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, बरसात में अरवी की बेहतरीन उपज के लिए कंदों की बुआई फरवरी से मार्च के बीच में की जाती है, ताकि मानसून के मौसम में यानी जुलाई अगस्त में इसकी खुदाई की जा सके। किसान भाइयों, आपको बता दूं कि बरसात वाली अरबी की खेती के लिए उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 5.5 से 7 हो, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसके लिए खेत तैयार करते समय 40 से 60 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति एकड़ की दर से आप खेतों में मिला दें। किसान भाइयों, अरबी की बुआई के लिए सबसे पहले हमें अच्छी गुणवत्ता वाली स्वस्थ कंदों का चयन करना चाहिए, जिसका वजन करीब 20 से 25 ग्राम का हो। फिर जमीन की सतह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां या मेड़ बनानी चाहिए। इन मेड़ों पर पंक्तियों के बीच 60 सेंटीमीटर की दूरी पर और कंदों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखकर हमें कंदों की बुआई करनी चाहिए। कंदों को लगभग 5 सेंटीमीटर की गहराई में ही बोनी चाहिए।

किसान भाइयों, आपको बता दूं कि अरबी की फसल को नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन खेत में पानी जमा रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। बारिश शुरू होने से पहले तक हर हफ्ते आप इसकी सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहें। किसान भाइयों, अरवी की खेती के लिए हमें प्रति एकड़ लगभग 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 16 किलोग्राम पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अरवी के लिए आपको अपने क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे कि राजेंद्र अरबी 1, सत्यामुखी, पंत कंचालू या सफेद अरबी। ये नस्लें झारखंड और बिहार के लिए उपयुक्त मानी जाती है, अतः हमें इसका चयन करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि कुछ किसान भाई अरबी से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इसे एफडी वाली खेती की तरह उपाय करते हैं, जैसे फसल तैयार होने से पहले अप्रैल मई में वे इसके पत्तों को तोड़कर भी बेचते हैं और बाद में जुलाई अगस्त में बारिश के मौसम में मुख्य कंदों की खुदाई कर इसकी अच्छी कीमत वसूलते हैं, जिससे उन्हें दोहरा मुनाफा मिलता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अरबी की खेती कर दोहरा लाभ कमाना चाहते हैं तो अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें और आशा करते हैं आपको इसकी खेती से अच्छा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक नई विषय की जानकारी के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें श्रोताओं भी आप सुन रहे थे और आज इस कार्यक्रम में आपने जाना बरसात में होने वाली अरबी की खेती पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जानकारी दे रहे थे संजीव मेहता। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप हैं श्रोताओं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 6:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है चिंतन। जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई बहुत अधिक भार उठा नहीं पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित है तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण श्रोताओं और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? श्रोताओं, इस कारणवश हृदय में हमें दुख और असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संयोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देते हैं, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और अब आइए प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आप सभी का स्वागत है। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी मातृभूमि को समर्पित इस देश गान के साथ।

संवेद स्वरों में भी आपने सुना ये देशगान। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रही हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भजन सुमन कल्याणपुर की आवाजों में।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज में श्री कृष्ण भजन।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली

0: रामचरितमानस अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं श्रोताओं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 7 बजने को हैं समाचार, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान के पचपदरा में 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया। श्री मोदी ने कहा कि जोधपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन मारवाड़ क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर से संशोधित उड़ान योजना शुरू होने से छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों तक हवाई संपर्क बेहतर होगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार राष्ट्र प्रथम के दृष्टिकोण से काम कर रही है और हर क्षेत्र तथा हर नागरिक के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले श्री मोदी ने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल संयंत्र का लोकार्पण किया। उन्होंने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। बाद में गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र की में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान 10 राज्यों में 5% एथेनॉल

मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 1.4% मिश्रण ही हासिल किया जा सका। सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 से शानदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ।
1: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहां की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है, जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुना जा सकता है।
0: और अब आइए श्रोताओं, आपको बता दें आज यानी 5 जुलाई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियां। श्रोताओं, आज का दिन 1995 भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का जन्म हुआ था। इन्होंने बर्मिंघम इंग्लैंड और आयोजित सभी जगह में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले वर्ष 2016 में ब्राजील में खेले गए रियो ओलंपिक खेलों में एकल बैडमिंटन प्रतियोगिता में रजत पदक भी ये जीत चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता और ओलंपिक खेलों में रजत तथा कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। वर्ष 2012 में इन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की टॉप 20 में अपनी जगह बनाई। 10 अगस्त 2023 में पीवी सिंधु भारत की पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता था। वे हैदराबाद में गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में ट्रेनिंग लेती हैं और उन्हें ओलंपिक स्वर्ण क्वेस्ट नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था सपोर्ट करती है। श्रोताओं, आज के दिन ही सन 1960 में भारत के निवेशक और शेयर व्यापारी राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें भारत के बिग बुल और वॉरेन बफे के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म हुआ था। भारत के नामी जीव वैज्ञानिक रहे लालजी सिंह का जन्म भी आज ही के दिन सन 1947 में हुआ था। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रामविलास पासवान का जन्म भी आज के दिन ही सन 1946 में हुआ था। समकालीन कवि और लेखक ज्योति खरे का जन्म भी आज के दिन सन 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता

श्रोताओं, आज के दिन लाला दीन दयाल भारत के पहले पेशेवर फोटोग्राफर में से एक थे। इनका जन्म हुआ था 1844 उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में और आज के दिन ही सन 1905 में इनका निधन हो गया था। इनका कार्य आज भी एक ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। वे 19वीं सदी के भारत के ऐतिहासिक पलों को कैमरे में कैद करने वाले अग्रणी कलाकार थे। उन्होंने ब्रिटिश वायसराय, हैदराबाद के निज़ाम और कई राजाओं के शाही छाये चित्र लिए। इन्हें राजा का फोटोग्राफर भी कहा जाता था। वहीं आज के दिन श्रोताओं, पी गोपीनाथन अय्यर सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1922 को केरल में हुआ था। ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने सामाजिक सुधारों, ग्राम विकास और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। सन 2007 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया और 5 जुलाई सन 2022 को इनका निधन हो गया। वे सत्य, सेवा और संघर्ष का प्रतीक माने जाते थे। श्रोताओं, आज के दिन ही सन 1957 में भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्ञ और आधुनिक बिहार के निर्माता अनुग्रह नारायण सिन्हा का निधन हो गया था। और श्रोताओं, आज का दिन नेशनल वर्कहोलिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन उन लोगों के लिए समर्पित है जो अत्यधिक कार्य करते हैं और अक्सर अपने स्वास्थ्य, परिवार और सामाजिक जीवन की अनदेखी कर देते हैं। काम करना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ श्रोताओं, अपने स्वास्थ्य पर, अपने परिवार पर और सामाजिक कार्यों पर भी हमें ध्यान देना उतना ही जरूरी है। इसलिए काम के साथ साथ अपने अपनों को आप समय जरूर दें। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज यानी 5 जुलाई के इतिहास से जुड़ी कुछ खास और रोचक जानकारियाँ। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के आज के संक में हमने शामिल किए हैं संगीत, आवाज है पंकज दास की, आइए सुनते हैं। श्रोताओं, जीवन में जब कोई नया जीवन आ जाता है तो हम कितने खुश होते हैं ना। परिवार में एक नए सदस्य का आगमन हो जाता है, फिर शुरू होती है उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी को पूरे करने की कवायद। यानी बचपन से ही बच्चे को हम तैयार करते हैं उनके आने वाले सफ़र के लिए, वही सफ़र जो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। श्रोताओं, हम कहते हैं कि चलो बड़े हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इतना पढ़ लो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्रोताओं, हम चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें हमेशा अपने अपनों की, अपने से बड़ों की दुआओं की ज़रूरत रहती है। तभी तो इतनी सारी भीड़ में हम अपना नाम बना पाते हैं अपने अपनों के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत करते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकगीतों के आज के सफर में हमने शामिल किए हैं भोजपुरी लोकगीत, कलाकार हैं शंभूराम और साथी

लोकगीतों के कार्यक्रम में श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत, कलाकार थे शंभूराम और साथी। इसी के साथ श्रोताओं आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और श्रोताओं आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 7:35 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम सुरांजलि में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं आधुनिक गान, कलाकार हैं मधुजा चैटर्जी।

0: बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए थे आधुनिक गान, कलाकार थी मधुजा चैटर्जी। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 7:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम। स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में भेंट वार्ता का विषय है नवजात शिशु और उनकी जरूरी देखभाल। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं डॉक्टर निशा चौधरी और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में हम बातें करेंगे नवजात शिशु की देखभाल के बारे में। नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए और क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनके स्वास्थ्य पे कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इस विषय पर बातें करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निशा चौधरी। डॉक्टर साहिबा, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहिबा, नवजात शिशु क्या विशेष देखभाल करने की जरूरत होती है?
2: नवजात शिशु जो है जिनका जन्म अभी अभी हुआ है उनकी देखभाल दो कैटेगरी में होते हैं। एक होती है जो इमीडिएट केयर मतलब तुरंत, वो या तो डॉक्टर्स या फिर नर्सेस के द्वारा दी जाती है, जिसमें है कि जन्म के तुरंत बाद उनको हम तुरंत ड्राई करते हैं, वार्मर के नीचे उनको गर्माहट देते हैं। उसके अलावा हम लोग उनको थोरो जांच करते हैं कि उनको किसी तरह की कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, बाहरी तौर से उनके शरीर के गठन में किसी तरह की परेशानी तो नहीं है। उसके अलावा उनके माउथ का, नाभि का, आंख का, सब तरह का क्लीनिंग किया जाता है।
1: ये तो उन लोगों के द्वारा देखभाल का तरीका है जो प्रशिक्षित है।
2: जी बिल्कुल।
1: लेकिन घर आने के बाद महिलाएं अपने बच्चे का देखभाल किस तरह से करें?
2: घर आने के बाद जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है बच्चे को प्रॉपर तरीके से गर्माहट दे करके अच्छे से रखने का। वो तीन तरह से आप कर सकते हैं। पहला है कि उनको अच्छी तरह से कवर किया जाए। जिस कमरे में भी आप बच्चे को रख रहे हैं वहाँ पर अच्छे से रोशनदान होना चाहिए, जहाँ से थोड़ा धूप भी आ सके और वहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो, जहाँ पे सही तरीके से हवा का संचार हो। उसके अलावा आप ब्लोअर भी चला सकते हैं जिससे कि रूम को थोड़ा गर्म रखा जा सके। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें ये समझना है कि माँ को अगर बच्चे के साथ रखा जाए तो माँ का जो स्किन है वो बच्चे को गर्माहट दे सकता है। तो छोटे बच्चों को स्पेशली चिपका के रखने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मदर के बगल में है तो वो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग ले सकते हैं, उसके अलावा गर्माहट तो मिलती है और सबसे ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव जो कि जी जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो बहुत सारा पॉजिटिव चीजों में तब्दील होता है दोनों ही माँ और बच्चे दोनों के लिए। उसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबने सुना होगा कोलेस्ट्रम का नाम, पीला गाढ़ा दूध। पहले 72 घंटे में जो आता है वो बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह से बचाने में बहुत ज्यादा कारगर है। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि बच्चे को उससे अनविघ नहीं रखना चाहिए।
1: तो इतने छोटे बच्चे को आमतौर पर किस तरह की बीमारियां होने का खतरा ज्यादा रहता है?
2: सबसे पहले जो मैंने बताया कि गर्माहट, तो गर्माहट में कमी आने की वजह से बोलते हैं तापमान घट जाना, जिसको हाइपोथर्मिया का नाम बोलते हैं, जाड़ा में बहुत ज्यादा कॉमन है। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को प्रॉपर गर्माहट रखे ताकि बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो। उसके अलावा कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि सभी माओं को जानना जरूरी है, जैसे अचानक से बच्चे का दूध पीना कम कर देना।

0: बच्चे का सुस्त हो जाना, हद से अधिक कम रोने लग जाना या हद से अधिक रोने लग जाना, या फिर कुछ भी एबनॉर्मल एक्टिविटी आप बच्चे का नोटिस कर रहे हैं, हद से अधिक पेट फूलना, उल्टी हो जाना, ये सारी ऐसे सिम्टम्स है जो, या फिर सांस का तेज चलने लग जाना, इन सब से माँ को लगना चाहिए कि कुछ नॉर्मल से अलग होकर के हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। माइल्डर रूप में जैसे आंख का इन्फेक्शन हो जाना जिसमें आंख में किच्ची आने लग जाती है, उसके बचाव के लिए जरूरी है कि आप आंख को डेली एक बार मॉर्निंग में क्लीनिंग करें, गर्म पानी में कॉटन डाल के प्लेन पानी में क्लीनिंग करें। नाभि की देखभाल के लिए कुछ दवा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ गीला नहीं होना चाहिए, वो खुला और सूखा होना चाहिए। दानों के मामलों में ज्यादातर जो जन्म के बाद कुछ कुछ दाने निकलते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इम्पोर्टेंट वो दाने होते हैं जो पस से भरे हों, पीले रंग के दाने अगर बहुत सारे शरीर पे आ रहे हैं तो वो भी इन्फेक्शन का ही इशारा है।
1: अच्छा।
0: तो वैसे केस में आप डॉक्टर से तुरंत मिले।
1: अंत में आप उन महिला श्रोताओं को या फिर उन माओं को जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: विशेषकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि माँ का दूध बहुत जरूरी है, आप किसी भी पानी, घुट्टी, शहद किसी भी तरह का सेवन बच्चे को ना कराएं, पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध का सेवन कराएं।
1: डॉक्टर साहिब, आपने काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता नवजात शिशु और उनकी जरूरी देखभाल के बारे में। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही थी डॉक्टर निशा चौधरी और इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 870-001-4242 पर।
4: 870-001-4242।
5: जहाँ लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहाँ की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर।

0: जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: FM के 102.4 MHz पर श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। सुबह के 8 बजने को हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 का वक्त होगा मॉर्निंग न्यूज का और 8:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 8:45 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ और 9:05 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुरंजना का। 9:30 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है समाचार प्रभात, आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
2: से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
4: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे के वहाँ पे बिजनेस पे विद्यार्थियों पे हर क्षेत्र के वर्ग को हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
2: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: पांच

0: पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
2: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
3: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को

0: मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। तो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का

0: वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगा नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन। राष्ट्रीय एसटी आयोग की पहल पर गुमला में प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद आयोजित। सदस्य आशा लकड़ा ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। देवघर और गुमला से एक एक टन आम्रपाली आम किया गया दुबई निर्यात। राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और झारखंड कुश्ती टीम की घोषणा, चयनित खिलाड़ी हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, डिजिटल गवर्नेंस और आईटी निवेश के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई पहचान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य का डिजिटल रोडमैप प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान झारखंड की भावी विकास रणनीति देश विदेश के उद्योग जगत और नीति निर्माताओं के समक्ष रखी जाएगी। इस दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर रांची आईटी पार्क को निवेश प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान झारखंड से जुड़े सांगठनिक विषयों और राज्य की वर्तमान हालात पर भी चर्चा हुई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
1: For those of you who have worked with me and know me, criticism को मैं welcome करता हूँ। आपको कुछ लगे कि हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें कोई कमी है तो आप बताइए, हम आपकी बात सुनेंगे, आपके सुझाव जो हैं उनको हम अपने काम में incorporate करेंगे and we will make the correction।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहल पर गुमला के डुमरी प्रखंड कार्यालय में जनजातीय संवाद का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों, समस्याओं और उनके अधिकारों से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने समस्याओं के त्वरित समाधान का संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया।
2: आयोग का जो मूलभूत काम करने का तरीका है, जनजातीय समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण और उनका सेफगार्ड करने के लिए काम करती है। इसी निमित्त और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जो जनहित से जो योजना विकास प्रक्रिया है उनमें तमाम ऐसे योजना जो आज तक गांव तक नहीं पहुंच पाई है, इन सब के बारे में जानकारी लिए है।
0: आईआईटी आईएसएम धनबाद ने असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 के कुल 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के साथ पीएचडी की डिग्री अनिवार्य है। झारखंड स्वास्थ्य मिशन रांची के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 150 लोगों की सामान्य रोग, नेत्र, त्वचा एवं श्रवण संबंधी स्वास्थ्य जांच की गई। आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पलाश, जिला प्रशासन और एपीडा के संयुक्त प्रयास से कल गुमला से 1 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले आम्रपाली आम का दुबई के लिए निर्यात किया गया। इधर देवघर से भी 1 टन आम्रपाली आम की खेप को हरी झंडी दिखाकर दुबई के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना किया गया। संभावित कम वर्षापात और वैकल्पिक कृषि नवाचार मोटे अनाजों दलहन तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक साहिबगंज जिले के सभी प्रखंडों पंचायतों तक बिरसा कृषि रथ चलाया जा रहा है। साहिबगंज जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि पंचायत के किसानों को विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया जा रहा है।
3: 1 जुलाई से 15 जुलाई तक साहिबगंज जिला में सभी प्रखंडों के पंचायतों में बिरसा कृषि रथ का परिचालन किया जा रहा है। बिरसा कृषि रथ के माध्यम से किसानों को सरकार के विभिन्न तरह के कृषि विभागों की योजनाओं की जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ किसानों को कम वर्षापात की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक फसलों की खेती करने हेतु जागरूक किया जाएगा।
0: सिमडेगा में पुलिस ने हत्या के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ खिलवाने के 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि मामला कुरडेग और बानो थाना क्षेत्र का है।
4: 2 भाइयों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसमें बड़े भाई सुमन डोंगडोंग ने अपने लाठी से वार किया, जिससे वह जख्मी हो गया और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें बड़े भाई सुमन डोंगडोंग को गिरफ्तार किया गया, आगे का समय जल्द।
0: राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी गरज के साथ बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि निम्न दबाव के कारण अगले 3 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
5: लो प्रेशर अभी बना हुआ है और तो इसे आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में आप देखिएगा कि झारखंड में भी बारिश आपको बढ़ते हुए दिखेगी। अभी बारिश लगभग रोज देखने को मिलेगी और 2-3 दिन बाद से लगभग सभी इलाकों में आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी।
0: झारखंड राज्य कुश्ती संघ ने आधार सत्यापन के बाद वर्ष 2026 के लिए झारखंड अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती टीम की घोषणा कर दी है। चयनित खिलाड़ी 10 से 12 जुलाई तक हरियाणा के रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर प्रमुख अखबारों ने गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर एक्शन की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर चला बुलडोजर, 8 घंटे तक चली कुर्की, शीर्षक के साथ खबर को प्रभात खबर ने सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण लिखता है बड़गांई और कांके अंचल के 5 मौजा की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज पर लगाए रोक, ईडी ने किया पत्राचार। हिंदुस्तान ने लिखा है ट्रेजरी घोटाले में 10 के खिलाफ 4

शीट। दैनिक भास्कर ने लिखा है वैभव का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय मंच पर रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप। 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित होगा नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन। राष्ट्रीय एसटी आयोग की पहल पर गुमला में प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद आयोजित। सदस्य आशा लकड़ा ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। राज्य के स्थानीय कृषि उत्पादों को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। देवघर और गुमला से एक एक टन आम्रपाली आम किया गया दुबई निर्यात। राज्य के कई हिस्सों में आज गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। और झारखंड कुश्ती टीम की घोषणा, चयनित खिलाड़ी हरियाणा में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का करेंगे प्रतिनिधित्व। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मुझे सतना मध्य प्रदेश के कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, माय गॉड पर एक मेल भेजा, रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं, बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डालें। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था, मैं भरत जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुँचाई। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूँ।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज की अत्याधुनिक और प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया में, तकनीकी रूप से उन्नत इस दुनिया में, एक शब्द जो है वो हमारे जीवन के केंद्र में आ गया है और वो शब्द है वर्कहोलिज्म, यानी कार्योन्माद। जब कोई व्यक्ति काम के प्रति इस कदर समर्पित या कहें कि मजबूर हो जाता है कि उसका व्यक्तिगत जीवन, स्वास्थ्य, सामाजिक रिश्ते और मानसिक शांति सब कुछ दांव पर लग जाते हैं, तो वो वर्कहोलिक कहलाता है। इस गंभीर विषय पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और लोगों को अपनी जीवन शैली पर पुनर्विचार करने के लिए हर वर्ष 5 जुलाई यानी आज के इस दिन को नेशनल वर्कहोलिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। अक्सर समाज में श्रोताओं, मेहनती होने और वर्कहोलिक होने के बीच की बारीक रेखा को मिटा दिया जाता है। देर तक काम करने वाले को शाबाशी मिलती है, वीकेंड पर ईमेल का जवाब देने वाले को वफादार माना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में ये सफलता का पैमाना है या फिर ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर रही है। श्रोताओं, इस दिन की शुरुआत कब और किसने की, इसका कोई सटीक आधिकारिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से बढ़ी है और ये शुरू हुआ है अमेरिका से। लोगों को ये समझना और समझाना कि हर समय काम में डूबे रहना कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक जोखिम है। कामकाजी पेशेवरों को एक दिन रुक कर ये सोचने का मौका देना कि क्या वे अपने जीवन को नियंत्रण कर रहे हैं या उनका काम उन्हें नियंत्रित कर रहा है। श्रोताओं, आज के इस समय में काम करना और समय पर दफ्तर जाना, समय पर दुकान खोलना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन सब के साथ श्रोताओं, अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करना भी उतना ही आवश्यक है। श्रोताओं, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा असर जो है वो हमारे बच्चों को और हमारे परिवार में दिख रहा है। हालांकि लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं। इसीलिए इस भाग दौड़ी भरी जिंदगी से सैटरडे और आज संडे को थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और परिवार के साथ अपना पूरा समय बिताइए।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से श्रोता आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। और काम जीने के लिए किया जाता है श्रोताओं, जीवन काम करने के लिए नहीं है। ऑफिस का समय खत्म होने के बाद लैपटॉप बंद कर दें और अपने सहकर्मियों और बॉस को विनम्रता पूर्वक बताएं कि आप ऑफिस के घंटों के बाद केवल आपातकालीन स्थितियों में ही उपलब्ध रहेंगे। श्रोताओं, हफ्ते में कम से कम एक दिन या दिन का कोई एक हिस्सा, जैसे दोपहर के खाने का समय हो या रात के डिनर का समय, ऐसा रखें जब आप अपने फ़ोन, अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप, अपने आईपैड सब से पूरी तरह से दूरी बना लें और ये पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के साथ। ना कहना सीखें। यदि आपके पास पहले से बहुत काम है और अपनी क्षमता से अधिक काम लेने से आपको तकलीफ है तो मना करना सीखें। यह आपकी कार्य क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होता हूँ, हम कहने को तो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ या कहें कि उसकी गठरी उठाते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम अपने शौक को भूल जाते हैं। अपना शौक, अपने हॉबीज़ को याद करें। अपने काम के चक्कर में कहीं पीछे शायद आपने उसकी एक पोटली बनाई है और कहीं दिल के किसी कोने में रख दिया है और अब उस पोटली को खोलने का आपके पास समय नहीं क्योंकि काम है इतना। ऐसा नहीं है श्रोताओं, कोई भी उस पोटली को कभी भी खोल सकते हैं। और उस पोटली में से क्या निकलेंगी? आपकी हॉबीज, संगीत सुनना, पेंटिंग करना, बागवानी करना, किताबें पढ़ना, दुनिया भर की गपशप करना, गतिविधियों से आपके दिमाग को एक रीसेट बटन दबाने का जो है ना, वो एक मौका मिल जाता है। और इससे क्या होता है, इससे आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं ताकि फिर कल जब आप वापस से अपने काम को शुरू करें, अपने प्रोफेशनल जर्नी को शुरू करें, तो आपकी ये पर्सनल जर्नी आपको हमेशा मोटिवेट करती रहेगी।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म ये जवानी है दीवानी का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और धुन बनाई है प्रीतम ने। औषधों सफलता की परिभाषा केवल आपके बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी या आपके केबिन के आकार से तय नहीं होती। वास्तविक सफलता इस बात में है कि आप कितने स्वस्थ हैं, आपके रिश्ते कितने मजबूत हैं और आपके चेहरे पर कितनी मानसिक शांति है। श्रोताओं, आज नेशनल वर्कहोलिक्स डे पर आइए हम सब ये संकल्प लें कि हम वो चूहा दौड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक सचेत और संतुलित जीवन जिएंगे। काम जरूरी है, बेशक जरूरी है, क्योंकि ये हमें आजीविका और उद्देश्य देता है, लेकिन काम को अपने जीवन पर इस कदर हावी ना होने दें कि आप जब पीछे मुड़कर देखें तो आपके पास याद रखने के लिए केवल एक्सेल शीट्स और पीपीटी हो, खूबसूरत यादें नहीं। इस 5 जुलाई को अपना फोन थोड़ा सा दूर रख दें, अपने परिवार के साथ बैठें, चाय की चुस्की लें, मौसम बहुत अच्छा है, खुलकर सांसें लें, पकौड़े खाएं। याद रखिए, दुनिया आपके बिना भी चलती रहेगी, लेकिन आपका परिवार आपके बिना अधूरा है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 9 बजने को है समाचार। आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में 9:05 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम सुरंजना के साथ। 9:30 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव और सुबह 10:10 का वक्त होगा विश्व दर्पण समाचार का। 10:20 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ और दिन में 11:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर। 12:05 का वक्त होगा

0: कार्यक्रम भाव गीत का और 12:30 पर सुने का कार्यक्रम अंगना। FM के 102.4 MHz पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9 बजने को है समाचार, आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के इलाकों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू हो जाएगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही

छह विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।

आज आपके साथ इस संगीतमय सफर में आपके साथ है आपकी रेडियो साथी दीपिका। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुरंजना। और श्रोताओं, आज का शो एक ऐसी शेरनी के नाम है जिसने बैडमिंटन कोर्ट को अपनी सल्तनत और अपने रैकेट को अपनी तलवार बना दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं भारत की शान, भारत की जान पुसलरा वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु की। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटियों को कम न समझो ऐ जमाने वालों, ये उड़े तो आसमान में कोई दीवार नहीं होती। श्रोताओं, सफलता कभी भी थाली में परोसी हुई नहीं मिलती। आज जब हम पीवी सिंधु के गले में चमकते हुए ओलंपिक मेडल्स को देखते हैं तो हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं इस चमक के पीछे कितना अंधेरा और कितना पसीना छिपा है? आज कार्यक्रम सुरंजना में चलिए आपको लिए चलते हैं पीवी सिंधु के उस सफर की ओर जिसमें उन्हें पहचान मिली और भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया भी इन्होंने।

फिल्म साइना का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना, अमाल मलिक की आवाज़ में मनोज मुंतशिर के बोल हैं और धुन बनाई है अमाल मलिक ने। और श्रोताओं आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना। कार्यक्रम सुरंजना के आज के सफर में हम बातें कर रहे हैं पीवी सिंधु के बारे में, क्योंकि आज है इनका हैप्पी वाला बर्थडे। श्रोताओं पीवी सिंधु का जन्म आज ही के दिन यानी 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। माता पिता दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे, इसलिए खेल तो इनके खून में था, लेकिन सिंधु ने चुना बैडमिंटन। महज 8 वर्ष की उम्र से जब हम और आप खिलौने से

खेलते हैं, सिंधु ने पुलीला गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। पता है संघर्ष किसे कहते हैं? सिंधु रोज सुबह 4:30 बजे उठकर अपने घर से 56 किलोमीटर दूर एकेडमी ट्रेनिंग के लिए जाती थी, कड़कती ठंड हो या मूसलाधार बारिश। उस नन्ही सी बच्ची के कदम कभी नहीं डगमगाए। समर्पण की एक और मिसाल सुनते हैं श्रोताओं। 2016 के रियो ओलंपिक से ठीक 3 महीने पहले सिंधु के पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर था। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन सिंधु की आंखों में देश का तिरंगा लहरा रहा था। उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर शॉट प्रैक्टिस की और जब वो कोर्ट पर उतरी तो दुनिया देखती रह गई। रियो में सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वो यहीं नहीं रुकी श्रोताओं, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतकर वो भारत की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक मेडल्स जीते। कहते हैं ना, कमजोर हैं कोमल हैं कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, और जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। पीवी सिंधु की जिद ने भारत की एक मिसाल पेश की।

फिल्म रश्मि रॉकेट का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना निकिता गांधी की आवाज़ में। धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने और इस गीत को कलमबद्ध किया है कौसर मुनीर ने। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरंजना।

श्रोताओं, पीवी सिंधु ने दुनिया को दिखाया कि भारतीय बेटियां जब कोर्ट पर उतरती हैं तो इतिहास बदल देती हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हो या पद्म भूषण का सम्मान, पीवी सिंधु ने देश का नाम उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां हर भारतीय का सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है।

श्रोताओ, आज पीवी सिंधु सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि देश की करोड़ों लड़कियों के लिए उम्मीद की एक किरण है, एक मशाल है जो कहती है हम कुछ भी कर सकती हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान श्रोताओ फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। श्रोताओं, पीवी सिंधु की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने सपनों को इस तरह से जियो कि आप उसके लिए पागल हो जाओ। मुश्किलें खुद आपका रास्ता छोड़ दें, क्योंकि सलाम है सिंधु के इस जज्बे को और सलाम है भारत की इस बेटी को जिन्होंने हर मुश्किलों को पार कर भारत के तिरंगे को सबसे ऊपर फहराया है। हम सभी की तरफ से पीवी सिंधु को जन्मदिन की

फिल्म मैदान का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना, ए आर रहमान और नकुल अभ्यंकर की आवाज़ों में, बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने और धुन बनाई है ए आर रहमान ने। और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: सभी श्रोता बच्चों का कार्यक्रम में स्वागत। और पल्लव के आज के इस अंक के साथ हमेशा की तरह मैं आपकी सीमा दीदी। बच्चों, आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरह कर रहे हैं ना? वैसे सभी विषयों की तैयारी आपको नियमित रूप से समय बांटकर करनी चाहिए। हाँ, गणित विषय का अभ्यास आपको निरंतर करते रहना जरूरी है। बहुत से बच्चे गणित विषय का नाम सुनकर ही घबरा जाते हैं, लेकिन गणित विषय जटिल नहीं है, ये तो आसान विषय है। इस बारे में आज आपको बताएंगे गणित के शिक्षक जे.के. पांडे। आज भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल बताएंगी कि लक्ष्य निर्धारण कर आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों, बढ़ती जनसंख्या से मानव अस्तित्व के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, इस बारे में भी आज के कार्यक्रम में बातें होंगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें। क्या आप जानते हैं, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। शुरुआत में बड़े लक्ष्यों को हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे और आसान कार्यों में विभाजित किया जा सकता है। छोटे लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। इससे आप में समय के महत्व और अनुशासन की समझ विकसित होती है। लक्ष्य निर्धारण करियर में सफलता के रोड मैप के रूप में काम करता है। बच्चों, जिन छात्रों के पास उद्देश्य होता है, वे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करते हैं। बिना लक्ष्य के एक दिशा में मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। इससे होता ये है कि आप अलग अलग चीजों के बीच भटकते रहते हैं और आपका समय व्यर्थ बर्बाद होता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने से पहले आपको अपनी ताकत, कमजोरियों और रुचियों का आकलन अवश्य करना चाहिए। कई बार छात्र इन पहलुओं पर ध्यान नहीं देते और कठिन लक्ष्य बना लेते हैं। इसलिए पहले खुद के बारे में अच्छे से जान लें, फिर लक्ष्य निर्धारित करें। शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, समय के साथ प्रतिदिन के लक्ष्य को बढ़ाते जाएं। लक्ष्यों को उनके महत्व और प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे समय पर सभी काम आप पूरे कर सकेंगे। प्रतिदिन आपने कितना काम किया, इसके बारे में लिखें। इसी तरह सप्ताह भर के काम का आकलन करें। इसके लिए आप अपने बड़ों का मार्गदर्शन भी ले सकते हैं। हाँ, चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सकारात्मक रहें। अगर आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे कर लें, तो अपने आप को शाबाशी दें, खुशियां मनाएं। इससे आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। बच्चों, वैसे आपने भारतीय पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल का तो नाम सुना ही होगा। उन्होंने 20 मई 2011 को 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूकर एक नई उपलब्धि हासिल की। वे 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही हैं। उनकी अद्भुत उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अपनी उपलब्धियों और कड़ी मेहनत के बारे में वे क्या कहती हैं, आइए जानते हैं।
2: मैं दार्जिलिंग के पास सुकिया पोखरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन में मुझे खेल में बहुत रुचि थी और सभी खेल में मैं पार्टिसिपेट भी करती थी, लेकिन कभी मैं खेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आई। और मेरे माता पिताजी बहुत हिम्मत वाले हैं, वे हमेशा ये शिक्षा देते थे कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम लोग सब कर सकते हो। मैं गृहिणी थी, लेकिन मैं थोड़ा फिटनेस के प्रति अवेयरनेस था। मुझे पता चला था GRD में फिटनेस की क्लासेस होती है, वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो एक बार हम लोग फिटनेस की तरफ से दलमा ट्रैकिंग में गए थे, बस उसी समय बचेंद्री जी से मेरी मुलाकात हुई। 1999 की बात है, जब मैंने कहा कि मैं अपनी बड़ी बेटी को उसमें डालना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा बड़ी बेटी क्यों, आप भी इस फील्ड में आ सकती हो, क्योंकि दलमा एक बार वॉकिंग कंपटीशन था, उसमें मुझे 3rd प्राइज मिला था। तो उन्होंने कहा आप भी इस फील्ड के लिए फिट है, आप भी इसमें आ सकती है। एक बार तो सुन के विश्वास ही नहीं हुआ कि इस एज में हो, और वो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स, और एक गृहिणी के लिए। कहा कि उत्तरकाशी में एक कैंप लग रहा है, 21 डेज का एडवेंचर कोर्स चल रहा है, तो उसमें आप भी चले जाइए। तो बस वहीं से मेरी ये माउंटेनियरिंग की यात्रा शुरू हुई। शुरू में तो मैंने इसका बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया दार्जिलिंग से, फिर एडवांस कोर्स किया, और बचेंद्री जी लगातार हर साल वुमेन एक्सपी

0: ऑपरेशन करवाती थी, उसमें 10-11 लेडीज लोग को ऑल ओवर इंडिया से लेके जाती थी। और 2004 में फर्स्ट एक्सपीडिशन था नेपाल से आइलैंड पीक, उसमें मुझे भी लेके गई। फिर हर साल मतलब कोई ना कोई पीक में लेके गई, किलिमंजारो साथ में लेके गई थी, फिर काराकोरम पास गए थे, वहां से स्ट्रोक कांगरे क्लाइम किया। फिर एक था थार डेजर्ट एक्सपीडिशन 40 डेज का, जो कि हमें फेंसिंग के साथ साथ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ पूरा करना था। पूरा डेजर्ट एक्सपीडिशन था, डेजर्ट में कैमल में, ये 40 डेज का। एक दिन हम लोग एक दिन में 60 किलोमीटर कैमल की सवारी करते थे, और इसमें हम लोगों ने पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान और पंजाब का आधा वाघा बॉर्डर में ये कंप्लीट हुआ था। तो फिर उसके बाद किलिमंजारो से जब 2007 में आए, तब बचेंद्री जी ने कहा कि यू आर फिट फॉर एवरेस्ट, तुम एवरेस्ट की तैयारी करो। और मैं अपने एवरेस्ट की तैयारी में पूरी तरह से लग गई। ये अक्टूबर 2010 की बात है। उस समय बहुत सब जगह से लड़के लड़कियां आए हुए थे, तो फिर एक बार सिक्किम गई ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ भी लगातार प्रैक्टिस करती रही जमशेदपुर में भी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि बचपन में माँ से जो संस्कार मिले थे, पिताजी से, कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तुम कर सकते हो, और वो संस्कार अभी जाके काम आया। और टाटा स्टील का सपोर्ट और बचेंद्री जी का विश्वास, जिन्होंने मेरे जैसी उम्र दराज महिलाओं के ऊपर विश्वास करके एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर पहुंचाया।
1: दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल बता रही थी कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया। बच्चों, आप भी अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर उस पर फोकस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तब देखिए किस प्रकार सफलता आपके कदम चूमती है।

और बच्चों अब कुछ गौर करने योग्य बातें। हर वर्ष 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या आप जानते हैं बच्चों, भारत आज विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 2024 तक भारत की जनसंख्या 1.43 अरब का आंकड़ा पार कर चुकी है। चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत ने ये स्थिति पाई है। लेकिन क्या ये उपलब्धि है या चुनौती? क्या हम इस बढ़ती जनसंख्या को संभालने के लिए मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय दृष्टि से तैयार हैं? क्या हमारी सोच, हमारी योजनाएं और हमारी व्यवस्थाएं उतनी ही विकसित हुई हैं जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है? बच्चों, भारत की आबादी में हर साल लगभग 1% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। ये जनसांख्यिकीय बदलाव जटिल है और भारत में मानव विकास पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भारत की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक ये बढ़कर 1.5 अरब और 2050 तक 2 अरब के पार हो जाएगी। देश की जनसंख्या में हो रही तेज वृद्धि संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डाल रही है, जिससे पर्यावरण का क्षरण हो रहा है और गरीबी और असमानता बढ़ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एक चुनौती बन जाती है। शिक्षा का बुनियादी ढांचा बढ़ती आबादी की जरूरतों से जूझ रहा है और शहरीकरण के कारण मूलभूत आवश्यकताओं और आधारभूत अवसंरचना पर दबाव बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती आबादी की बोझ ने पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार अवसरों में भी कमी आई है। लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो सबसे बड़ी चुनौती पैदा होती है बच्चों, वो है प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव। इन प्राकृतिक संसाधनों में जमीन, पानी, जंगल और खनिज शामिल है। जनसंख्या के बढ़ने की वजह से इन संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है और कृषि उत्पादकता और पानी की कमी के साथ पर्यावरण में गिरावट होने की संभावना बढ़ जाती है। आबादी बढ़ने के कारण आवास, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की जरूरत भी बढ़ जाती है। एक बहुत बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना एक मुश्किल काम बन जाता है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा बदहाल हालत में जीने के लिए मजबूर हो सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता है। आज की तारीख में भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या की वजह से ये समस्या भविष्य में एक विकराल रूप ले सकती है। रोजगार की कमी आर्थिक असमानता और गरीबी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति फैल सकती है। बच्चों, एक बड़ी आबादी को शिक्षित और कुशल बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि समय के साथ जितने लोगों को शिक्षित और कुशल बनाने की जरूरत होगी, उतनी क्षमता शैक्षणिक संस्थानों के पास शायद नहीं होगी। इसका सीधा परिणाम ये हो सकता है कि बहुत से लोग अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे और बहुत से लोगों के पास जो कौशल होगा वो नौकरी के बाजार से मेल नहीं खाएगा। बढ़ती जनसंख्या की वजह से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, साथ ही आमदनी की असमानता भी बढ़ने का खतरा है। इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। वनों की कटाई, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ी चुनौतियों के तौर पर उभर सकते हैं। कुल मिलाकर लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य और

0: शतक उनकी पहुंच में गहरी असमानताएं पैदा हो सकती है। बच्चों, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी होने के बावजूद भारत की जनसंख्या का बढ़ना आज जारी है और ये अगले कई सालों तक जारी रहेगा। ऐसे में सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती लोगों के लिए प्रभावी नीतियां और योजनाएं बनाना और उन्हें लागू करना होगा। बच्चों, एक बड़ी आबादी भीड़ भाड़ को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही शहरीकरण को भी बढ़ावा देगी, जिसकी वजह से अपराधों में बढ़ोतरी हो सकती है और कानून व्यवस्था कायम रखना मुश्किल हो सकता है। ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के कोयला, तेल और गैस उत्सर्जन के 6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। इन चुनौतियों का सामना करने और दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों और संरक्षण परंपराओं का उचित प्रबंधन करना जरूरी है। जनसंख्या वृद्धि से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन में तेजी आती है। भारत को जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए हरित नीतियों को लागू करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और टिकाऊ अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता है। हरित भविष्य के लिए पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए कुछ जरूरी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे लोगों में शिक्षा का प्रसार करना जरूरी है, परिवार नियोजन, विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि और रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा। ये उपाय जन्म दर को कम करने में अत्यधिक प्रभावी साबित होंगे। तो बच्चों, बढ़ती जनसंख्या मानव अस्तित्व के लिए खतरा है, इस बारे में अभी हम बातें कर रहे थे। और अब आइए ये जानकारी सुनते हैं कि गणित विषय जटिल नहीं है, इस बारे में आपको उपयोगी पूर्ण जानकारी दे रहे हैं जेके पांडे।
1: आज हम सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। कुछ लोगों को मैथ देखकर तो कुछ लोगों को गणित के नाम सुनकर ही पसीना या घबराहट होने लगता है। इसको मैथ एंग्जाइटी बोल सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे दूर करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। किसी कवि ने कहा है कि तू हिंदी की भाषा, हिंदी के बारे में बोला है कि तू हिंदी की भाषा और मैं गणित का सवाल, मेरे उत्तर तो सिर्फ एक हैं, तेरे अर्थ हजार। हाँ मेरे बच्चों, गणित आपको कठिन लगता है, एक्चुअली ये कठिन है नहीं जितना इसको बताया जाता है। यह एक वहम है और समाज में फैली एक भ्रांति की तरह है जिससे यह आपके दिमाग पर डाल दिया जाता है कि यह कठिन विषय है। आइए आपको मैं जेके पांडे बताता हूँ कि गणित में बेहतर कैसे बने। आप सबसे पहले सकारात्मक सोच के साथ अभ्यास करें गणित और इस सोच से आगे बढ़ें कि जब यह सवाल सबसे बन जाता है तो मेरे से क्यों नहीं, जब हमारे दोस्त बना लेते हैं, हमारे शिक्षक बना देते हैं तो हमसे क्यों नहीं बनेगा। हमेशा सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमेशा मेरी 3 शब्द याद रखें, PPP, पेन, पेपर एंड प्रैक्टिस। यह मैथ्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी आप गणित के प्रश्न को हल करें तो उपरोक्त 3 लेटर याद रखें। कभी भी मैथ के प्रश्न को लर्न करने की कोशिश नहीं करें। एक सवाल बहुत सारे मेथड से बनाए जाते हैं। जिस तरह खेल का अभ्यास किया जाता है उसी तरह गणित को जितना अभ्यास करेंगे गणित उतना ही बेहतर होगा। आइए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। फर्स्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। सर्वप्रथम गणित में उसके बुनियादी बातों को समझने का प्रयास करनी चाहिए। यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए जरूरी है। यदि आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो गणित बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, रटे नहीं, कभी भी गणित को रटनी नहीं चाहिए। कवि बृंद ने कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार रस्सी के बार बार रगड़ से पत्थर पर निशान हो जाता है, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से आपकी बुद्धि बढ़ती है और ठीक इसी प्रकार गणित को साधना है तो खूब प्रैक्टिस करनी होगी। थर्ड, चैप्टर को बीच में न छोड़ें। हाँ मेरे बच्चों, चैप्टर को कभी भी बीच में नहीं छोड़ें। अगर यदि कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसी पर फोकस करें, अपने पेरेंट्स या टीचर से हेल्प लें। जैसे हम उदाहरण के रूप में आपको ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं, आप

0: के ही सवाल हल करें। आप रोज के घरेलू खर्च, अपने पिता की इनकम टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल, आपके घर में लगे बेडशीट, सोफा कवर, घर का एरिया कैलकुलेशन करें। इसमें अपने पेरेंट्स या टीचर का हेल्प लें। इससे आप में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी और मैथ में आपकी रुचियां बढ़ने लगेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहें। आपको मैथ्स में विनम्रता के साथ साथ आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। गणित किसी भी परिस्थिति में एक अवसर का निर्माण जरूर करता है। आपको प्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुजम की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके गुरु हार्डी उनसे मिलने आए और हार्डी को हॉस्पिटल में आधे घंटे के जगह पर 2 घंटे लगे पहुंचने में। तो रामानुजम ने पूछा कि इतनी लेट क्यों हुई। तो हार्डी ने कहा, जिस कैब से आया उसका नंबर 1729 था, 1729 था, यह अनलकी था, यह मेरे लाइफ का सबसे बोरियस जर्नी था इस अनलकी नंबर के कारण। इस पर रामानुजम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सर, कोई भी नंबर बोरियस या अनलकी नहीं होती है, यह नंबर 1729 की भी खासियत है। वैसी नंबर है जो दो घनों के योग के रूप में दो अलग अलग तरीकों से व्यक्त की जाती है। यह सबसे छोटी संख्या भी है। जैसे 1729 ही पहली छोटी नंबर है जो 9³ + 10³ = 1³ + 2³। फिर बताता हूँ, 9³ + 10³ और 1³ + 12³ ये दोनों के सम का सेम नंबर होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो रामानुजम ने यह दिखा दिया कि जिसको आप अनलकी बोलते थे उसमें भी एक अच्छी अवसर है और यही सकारात्मक सोच का प्रमाण है। अर्थात मैथ हमें अनुशासन के साथ साथ यह सिखाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैव सॉल्यूशन, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ हर समस्या को हल करना सिखाता है गणित, और यही है गणित। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें। जो स्वयं में कोई कीमत नहीं है, जीरो अपने में कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर कीमत कई गुना बढ़ा देता है। थैंक यू
1: बच्चों। ये थे गणित शिक्षक जे.के. पांडे, जो गणित विषय जटिल नहीं है इस बारे में बता रहे थे। हमें उम्मीद है बच्चों आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। और अब आइए सुनते हैं ये गीत।

बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बातें की कि बढ़ती जनसंख्या मानव अस्तित्व के लिए किस प्रकार खतरा है। लक्ष्य निर्धारण को आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा किस प्रकार बना सकते हैं, इस बारे में हमने चर्चा की। गणित शिक्षक जेके पांडे ने आपको बताया कि गणित विषय जटिल नहीं है। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता एस्थर चैंपी। और बच्चों, इसके साथ ही आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। सीमा दीदी को दीजिए अनुमति। जय हिंद बच्चों।

0: साप्ताहिक कार्यक्रम पल्लव श्रोताओं भी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप है हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।
4: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में बारी बारी से, और 10:10 पर आप सुनेंगे विश्व दर्पण समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की प्रशंसा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप, बिजली आपूर्ति प्रभावित। और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जकार्ता में इंडिया क्लब के अध्यक्ष सिद्धार्थ टपाड़िया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे।
1: पूरे इंडोनेशिया में, न केवल जकार्ता में, एक उत्साह की लहर दौड़ रही है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं इंडोनेशिया, तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 200 वॉलंटियर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी से आ रहे हैं अपना कल्चर डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। इसके अलावा जकार्ता से बाहर से बहुत सारे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेडान हो, बाली हो, सुराबाया हो या समारांग हो।
0: इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज़ ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्व पूर्ण है और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देश और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 जुलाई तक की इस यात्रा में डॉक्टर जयशंकर विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार कल से तेहरान में शुरू हो गए। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।

0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने कहा है कि देश में भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हैं। लगभग 16,000 लोग बेघर हुए हैं। देश में एक सदी से भी अधिक समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान अब भी जारी है। इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के शोक की घोषणा करते हुए कहा कि विनाशकारी भूकंप से हुई जान माल की हानि से पूरा देश सदमे में है। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिससे राजधानी कराकस में कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के झटके वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू का प्रकोप जारी है, इससे बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण फीफा फुटबॉल विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमरीकी मौसम विभाग ने कहा है कि बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 44 डिग्री और वाशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। इसी पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माली की सेना ने कहा है कि विद्रोहियों ने उत्तरी इलाकों के गांव और सिवारी कस्बों को निशाना बनाया है। एक विद्रोही गुट के उत्तरी इलाके के एक कस्बे पर कब्जा करने के लिए नए हमले का ऐलान करने के बाद ये बयान आया है। आजाद लिबरेशन फ्रंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादी एनएफएस कस्बे को निशाना बना रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में पैराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले टेक्सास में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 की शानदार जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट की बात करें तो मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर ही 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब बात टेनिस की। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना राय बकीना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वेटेक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में रूस के रोमन सफियोलिन से मुकाबला होगा। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली की सिनर का सामना जापान के शिंतारो मुजुकचुकी से होगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 4 खाड़ी देशों और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:20 हो रहे हैं। फिल्म संगीत हम लेकर हाजिर होते हैं बस थोड़ी ही देर में।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों के आज के सफर में आपके साथ है आपके रेडियो साथी दीपिका। नमस्कार श्रोताओं,

इस हफ्ते यानी भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। ये सप्ताह भर चलने वाला राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। श्रोताओं, वर्ष 2026 में भी वन महोत्सव पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वृक्षारोपण, जन जागरूकता कार्यक्रम और पौधों के वितरण जैसे अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। कहते हैं ना कि चलो उठो, धरा का श्रृंगार करते हैं। हर दिन हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, अपने आसपास वातावरण की सफाई करते हैं, लेकिन आज मन में इस हफ्ते ठानते हैं कि हम अपनी पृथ्वी का श्रृंगार करेंगे। उठो, जागो, नवयुग के निर्माता प्रकृति आपको बुलाती है। सूखी धरती तपती सांसें अपनी व्यथा सुनाती है। श्रोताओं, ये वन महोत्सव मात्र एक दिवस नहीं, एक पावन सा संकल्प है पर्यावरण को बचाने का, अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुखद वातावरण देने का। अब बचाना कोई विकल्प है, कुल्हाड़ी को अब हमें रोकना है, हाथों में नया पौधा अब थामना है, धरती माँ की सेवा करने का हमें अपने मन में अब ठान लेना है। एक पेड़ जो हम लगाएंगे वो आने वाला कल बदलेगा, जो आज हम पसीना बहाएंगे कल उसी से जीवन फलेगा। ये वृक्ष नहीं है श्रोताओं, ये जीवन के रक्षक हैं, वरदान हैं। ये शुद्ध हवा, ये शीतल छाया सृष्टि की असली जान है। पशु पक्षियों का बसेरा है ये, नदियों के सच्चे मीत हैं ये, मौसम का जो संतुलन बनाए ये प्रकृति के वो गीत हैं। हमें भूलना नहीं है कि वृक्षों से ही हमारा अस्तित्व है, और अगर उजड़ गए ये जंगल सारे तो जीवन हमारा इसका अंत निश्चित है। तो श्रोताओं, आइए मिलकर ये कसम खाते हैं, हर सूनी राह को हम सजाएंगे, इस बंजर होती धरती को हम फिर से स्वर्ग बनाएंगे। एक पौधा अपने हाथ से आज हर कोई लगाएगा, जब महकेगी ये हरी भरी धरती तभी तो वन महोत्सव सफल कहलाएगा।

तो चलिए हाथ मिलाते हैं, अब प्रकृति का सत्कार करते हैं, पेड़ लगाकर इस धरती का आइए हम मिलकर श्रृंगार करते हैं।

फिल्म ताल का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में। आनंद बख्शी ने इस खूबसूरत से गीत को कलमबद्ध किया है और ये धुन बनाई है एआर रहमान ने। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो।

श्रोताओं, वन महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री के एम मुंशी द्वारा की गई थी। दरअसल इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश भर में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था और लोगों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति प्रेरित करना था। समय के साथ ये अभियान भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जन आंदोलनों में शामिल हो गया और इसे वनों का उत्सव भी कहा जाने लगा। वन महोत्सव केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है श्रोताओं, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के महत्व और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित क्षेत्रों के विस्तार के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है।

फिल्म मिशन कश्मीर का ये गाना श्रोताओं भी आपने सुना, उदित नारायण, अलका याग्निक और शंकर महादेवन की आवाज़ों में समीर के बोल हैं और संगीत बद क्या है एहसान नूरानी ने। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, भारत वन एवं वृक्ष आवरण बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण लगभग 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। वर्ष 2021 की तुलना में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को ये दर्शाता है। ये प्रगति पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। श्रोताओं, हम सभी के लिए वन महोत्सव केवल एक वार्षिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ये तो हर दिन का एक डेली रूटीन होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। हम आज अगर अपने बच्चों को जलवायु प्रदूषण या फिर पर्यावरण की चुनौतियों पर अगर समझाते हैं, तो हमारे बच्चे आज से ही पेड़ पौधों को अपना जीवन मानने लगेंगे। श्रोताओं, हम सभी नागरिक की भागीदारी इसमें जरूरी है। यदि समाज का हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरित और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। यहाँ तक कि हम अपने बच्चों को भी अगर हम ये सिखाएं कि अब हर दिन जिस तरह से वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, शाम में खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं,

टैबलेट्स देखते हैं, उसी तरह से पेड़ों का देखभाल भी उन्हें ही करना है। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण मंत्रालय वन महोत्सव के लिए एक विशेष थीम घोषित करते हैं। वन महोत्सव 2026 की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का उपचार। श्रोता, ये थीम लोगों को देशी प्रजातियों के पौधे लगाने, लगाए गए नए पौधों की नियमित देखभाल करने और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सतत जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

उदित नारायण की आवाज़ फिल्म सिर्फ तुम का ये गाना श्रोताओं अभी आपने सुना, समीर के बोल हैं और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, एक सामान्य सा प्रश्न जो है वो अक्सर पूछा जाता है कि वर्तमान समय में वन महोत्सव का आखिर क्या महत्व है। आज के दौर में वन महोत्सव को महत्व से पहले कहीं अधिक बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जैसे IPCC के अनुसार अफॉरेस्टेशन और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थान जैसे प्रकृति आधारित समाधान, वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिए अत्यंत जरूरी हो गया है। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि भारत में आबादी सबसे ज्यादा है अभी पूरी दुनिया में, विस्तारित हो रहा है। बुनियादी ढांचा तथा बदलते जलवायु पैटर्न के कारण पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए वन महोत्सव सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते का या फिर कुछ महीनों का महत्व नहीं रहा गया, बल्कि ये एक सामाजिक उद्देश्य को पूरा करता है। जिस तरह से हम हर दिन ये सोचते हैं कि हमें किस तरह से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम हरे पेड़ पौधों की रक्षा करें, उन्हें काटने ना दें। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन से भी हमें मुकाबला करना है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। और यही नहीं श्रोताओं, हमारे कई पशु पक्षी, वन पक्षी, स्तनधारियों, कीट पतंगों और न जाने कितने असंख्य जीव जंतुओं के लिए पेड़, जंगल प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, जो स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। और यही नहीं, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती प्रदान करती हैं, भूमि कटाव को रोकती हैं और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होती हैं।

0: और दोस्तों चलते चलते बस इतना ही कहेंगे कि पेड़ सिर्फ लकड़ी, फल या छांव नहीं देते, ये तो धरती माँ की सांसें हैं। आज वन महोत्सव के इस सफर को हम यही विराम दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए श्रोताओं, प्रकृति से हमारा रिश्ता सिर्फ एक दिन का नहीं, हर धड़कन का है। जब एक बीज मिट्टी का सीना चीर कर बाहर आता है तो वो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है, हार ना मानने का सबक। आज जब हम अपने घरों को लौटेंगे तो अपने साथ सिर्फ यादें नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी लेकर जाएंगे। आइए अपनी आने वाली पीढ़ियों को कंक्रीट के सूखे जंगल नहीं बल्कि हरी भरी और मुस्कुराती हुई जमीन सौंपने का वादा करें। एक पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि जब वो बढ़ेगा तो सिर्फ पर्यावरण ही नहीं हमारा कल भी महकेगा। प्रकृति से जुड़िए, इसे संवारिए, क्योंकि अगर पेड़ सुरक्षित हैं तभी हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। पेड़ पौधे हैं जीवन का आधार और इनके बिना है सूना संसार। इसके साथ ही श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है, समाचार आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के

0: नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 11:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम।

नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम के साथ आज मैं रंजना। श्रोताओं नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम को हमने सजाया है खूबसूरत गीतों से, बातचीत से और कुछ एहतियात बरतने वाली बातों से, क्योंकि मौसम का मिजाज से तो हम रूबरू हो रहे हैं। कभी आषाढ़ की पुहार मन को पुलकित कर रहा है तो कभी उन बूंदों का सीधे धरती पर गिरना और उससे उड़ते सौंधी खुशबू, तो कभी बादलों की ओर से गुनगुनी धूप हमें आनंदित कर देती है, तो कभी ठंडी हवाएं हमें छूकर आंखों को बंद कर इसके एहसास को जीने के लिए लालायित करती है। प्रकृति के साथ जुड़ा हमारा ये रागात्मक संबंध ही तो हमारी संवेदना को कोमल और जीवंत बनाए रखता है।

हुकूमत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की आवाज में, शब्द कार्ती वर्मा मल्लिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। दोस्तों, मौसम का जिक्र हो रहा है तो हम बताते चले, मौसम कभी हमें बेहद हसीन लगता है तो कभी बेहद खतरनाक, अचानक से करवट लेती है ये मौसम भी, है ना। अक्सर हम पढ़ते या सुनते हैं मौसम विभाग के अलर्ट रेंज के बारे में, येलो, रेड, ऑरेंज अलर्ट। इनका मतलब क्या होता है? येलो का मतलब होता है खतरा नहीं है लेकिन कभी भी मौसम खराब हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट यानी मौसम ने दस्तक दे दी है इसके खराब होने की, इसीलिए जरा सी भी लापरवाही से परेशानी हो सकती है। ऐसे में हमें अनावश्यक घरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। रेड अलर्ट यानी मौसम के कारण भारी नुकसान हो सकता है यानी खतरनाक स्थिति, जैसे बारिश में बाढ़ का आना, तूफान का आना। ऐसे में लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

ये थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल आनंद मिलिंद के धुन पर। आप सुन रहे थे समीर की रचना, फिल्म थी दिल। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

श्रोताओं, हमारे प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। ये अभियान 29 जुलाई तक चलेगा। इसमें बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे प्री फिल्ड इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं और भरे हुए फॉर्म के साथ उनकी नवीनतम रंगीन फोटो ले रहे हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार का दस्तावेज जमा नहीं करना है, केवल प्री फिल्ड फॉर्म का सत्यापन कर हस्ताक्षर के साथ जमा करना है। मतदाताओं की स्वयं और पैतृक मैपिंग का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। इसके आधार पर जिन मतदाताओं की मैपिंग सही पाई गई है, उन्हें दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नवीनतम रंगीन फोटो और हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म देने के बाद उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। प्रवासी श्रमिक, राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों और अस्थायी रूप से बाहर रहने वाले लोगों को केवल मैपिंग के लिए व्यक्तिगत रूप से आने की जरूरत नहीं है। उनके परिवार के सदस्य अथवा कोई भी माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति का नाम केवल एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में ही दर्ज हो सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो उसे अपने सामान्य निवास वाले क्षेत्र में ही इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना होगा तथा दूसरे स्थान पर मिला फॉर्म उन्हें बिना हस्ताक्षर के लौटाना होगा।

अरिजीत सिंह और शरिवा पारुलकर की आवाजें थी। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने, फिल्म थी सितारे जमी पर। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बारे में। जो लोग पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं, उन्हें बीएलओ फॉर्म 6 देंगे। फॉर्म 6 के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज उन्हें जमा करना होगा। अनमैप्ड मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से एक देना होगा। ये दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित अभिलेख, सरकारी सेवा अभिलेख, भूमि या राजस्व अभिलेख, पारिवारिक वंशावली से संबंधित सरकारी अभिलेख, किसी सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पहचान या जन्म संबंधी प्रमाणित दस्तावेज हो सकते हैं। ये अभियान केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। यदि किसी विदेशी नागरिक अथवा भारतीय नागरिकता छोड़ चुके व्यक्ति को इन्यूमरेशन फॉर्म मिलता है तो उसे बिना हस्ताक्षर किए तत्काल बीएलओ को वापस कर देना चाहिए। यदि किसी मतदाता को फॉर्म भरने, बीएलओ से संपर्क करने या एसआईआर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो वह भारत निर्वाचन आयोग की टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा ईसीआई नेट पर ऐप पर उपलब्ध ऐप पर बुके कॉल सुविधा के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस सुविधा का उपयोग करने पर संबंधित बीएलओ 48 घंटे के भीतर कॉल बैक कर समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता अपने बीएलओ से संपर्क करने के लिए घरों पर लगाए गए एसआईआर स्टिकर पर अंकित मोबाइल नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं। वहीं ईसीआई नेट ऐप के कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल फीचर के माध्यम से भी बीएलओ का मोबाइल नंबर प्राप्त किया जा सकता है। एक सही और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का बिल्कुल सही होना बेहद जरूरी है। वोटर लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल सही होना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सभी योग्य लोग समय रहते अपना एसआईआर फॉर्म जरूर भरें, जरूरी कागजात लगाएं और अपने एरिया के बीएलओ को सौंप दें ताकि वोटर लिस्ट में कोई गलती नहीं रहे।

0: की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में। श्रोताओं, क्लीन सिटी ग्रीन सिटी का दर्जा पाने वाले हमारे शहर जमशेदपुर आज प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के गंभीर संकट से जूझ रहा है। यह सीधे पर्यावरण, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है। यदि अभी हम नहीं जागेंगे, नहीं समझेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, साथ ही हमें भी। इसीलिए

बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बाजार जाते समय अपने साथ कपड़े, जूट या कैनवास का थैला जरूर रखें। सिंगल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतलों की जगह स्टील, कांच या तांबे की बोतल का इस्तेमाल करें। बाहर से चाय, कॉफी या जूस पीते समय प्लास्टिक कप और प्लास्टिक स्ट्रॉ लेने से मना करें। घर से बाहर जाते समय अपने पास स्टील की चम्मच या कांटा रखें, ताकि प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं करना पड़े। ग्रोसरी, फल और सब्जियां खरीदते समय प्लास्टिक की थैलियों के बजाय सीधे अपने बैग में रखें या बिना पैक किया हुआ सामान चुनें। प्लास्टिक की लिक्विड सोप बोतलों की जगह पारंपरिक साबुन की बट्टी का उपयोग करें और शैम्पू बार का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के टूथब्रश को बदलकर बांस से बने इको फ्रेंडली टूथब्रश का उपयोग शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते समय प्लास्टिक कटलरी न भेजें, विकल्प चुनें। किसी प्रकार के समारोह या पिकनिक में प्लास्टिक के डिस्पोजल प्लेट्स और कप के बजाय पत्तल या रीयूजेबल बर्तनों का उपयोग करें।

डिप्लोमेट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अनुराग सैकिया, रोमी, वरुण जैन और कौसर मुनीर की आवाज में, अनुराग सैकिया के धुन पर। शब्दकार थी कौसर मुनीर। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। लोग प्लास्टिक कचरा नदियों में फेंकते हैं, जलीय जीव को तो पता नहीं होता, वह प्लास्टिक खाकर मर जाते हैं। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। नदी के अलावा लोग जहां तहां भी प्लास्टिक फेंकते हैं, जिसे गाय, भैंस, कुत्ते खा लेते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है और जान भी जा सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, वजन के हिसाब से फाइन किया जाता है। बताते चले कि पकड़े जाने पर 200 से 25,000 रुपए तक फाइन लगाया जाता है। प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता, इससे मिट्टी, नदियां, झीले, समुद्र प्रदूषित होते हैं। प्लास्टिक को जलाने से अत्यधिक हानिकारक गैस निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइन, फ्लोरोसेंस। इसी प्रकार पानी टंकी वाले प्लास्टिक से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पॉलीस्टाइरीन यानी प्लास्टिक कप प्लेट से स्टाइरीन गैस निकलती है। इन गैसों से सांस संबंधी समस्याएं होती है, साथ ही कैंसर का खतरा भी बना रहता है। हार्मोन की समस्या भी हो सकती है और स्नायु तंत्र भी खराब हो सकता है। इसीलिए प्लास्टिक को ना कहें।

दूसरा आदमी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। मजरूह सुल्तानपुरी के गीत को संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, आए दिन साइबर अपराधी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं लोगों से ठगी के लिए। डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश और ओटीपी फ्रॉड के बाद अब ठगों ने बॉस स्कैम नाम का नया तरीका अपनाया है। इसमें अपराधी खुद को किसी कंपनी के मालिक, सीईओ या वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश कर कर्मचारियों से तत्काल पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। आपके बॉस के नाम पर अचानक पैसों की मांग की जाती है तो बिना पुष्टि किए कोई भी लेन देन करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अधिकांश मामलों में ठगी का सबसे बड़ा कारण जल्दबाजी होती है, इसीलिए

फंस गए हैं, फिर तत्काल किसी खाते में एक निश्चित राशि भेजने का निर्देश भी देते हैं। कई कर्मचारी इसे अपने बॉस वरिष्ठ का आदेश समझकर बिना जांच पड़ताल के पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और बाद में ठगी का पता चलता है। इसीलिए आप इसे पहचान करने के तरीके सीख सकते हैं। अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज, लेकिन डीपी में बॉस की तस्वीर आए तो संभल जाएं। अचानक ईमेल या मैसेज में तत्काल पैसे भेजने का निर्देश इसकी पहचान है। तुरंत काम पूरा करने का दबाव, संदिग्ध लिंक, जिप फाइल या अटैचमेंट डाउनलोड के लिए कहना। तो बचाव के लिए आप भुगतान से पहले सीधे फोन या आधिकारिक माध्यम से इसकी पुष्टि करें। अनजान लिंक, फाइल या अटैचमेंट नहीं खोलें। संदिग्ध नंबर या ईमेल ब्लॉक कर दें। ठगी या प्रयास पर राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। जल्दबाजी कभी नहीं करें।

श्रोताओं, हमारे खान पान की आदतों को प्रकृति करती है। हमारी आहार परंपरा में मौसम के अनुसार खान पान को ग्रहण करने की बातें कही गई है। मानसून में बैक्टीरिया और का संक्रमण का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए वर्षा ऋतु में वात दोष बढ़ता है और जठराग्नि कमजोर होने से शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस इस मौसम में तेजी से पनपते हैं। आयुर्वेद कहता है कि वर्षा में हल्का, सादा, ताजा और गर्म भोजन ही लेना चाहिए। मीठा, अम्ल और लवण का सेवन हितकारी है, साथ ही हरर और सेंधा नमक का सेवन भी लाभदायक है। पुराना चावल, लाल चावल, भुने धान, मूंग दाल, घी, जीरा, हींग, काली मिर्च, सौंठ, लहसुन और प्याज का सेवन फायदेमंद है। गरम मसाले फंगस और बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। रसोई में हींग, जीरा, काली मिर्च और सौंठ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए इस मौसम में। आज जब हम सुपरमार्केट के पैकेट बंद खान पान पर निर्भर हो चुके हैं, तो याद रखिए अपने दादा नानी के प्यार और अनुभव वाली समृद्ध परंपरा को, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी था। इस मॉनसून अपनी जड़ों की तरफ लौटिए, थोड़ा सुपाच्य खाइए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।

मधुवंती बागची और सुमंतो मुखर्जी की आवाजें थी, कुमार की रचना थी, संगीत दिया था व्हाइट नॉइज कलेक्टिव्स ने। फिल्म थी हाउसफुल 5।

चलते चलते एक बहुत ही जरूरी जानकारी आपको देते चलें। आरोग्य सेतु ऐप अब पूरी तरह डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हो गया है। नया ऐप आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिकॉर्ड और स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी सुविधाएं एक मंच पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और श्रोताओं, अब हम अनुमति चाहते हैं नमस्कार जमशेदपुर कार्यक्रम से।

0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य

क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम भावगीत। किस मंजिल की ओर चल पड़े हैं दो दीवाने, छोटे छोटे सपनों को संजोए अपने नैनों में, अपनी ही धुन में मस्त ऊंची ऊंची उड़ानों पे सवार हो, चल पड़े वहां जहां इनकी आशियान सजी है और जिसमें हो फूलों भरी डालियां, कुछ ऐसा ही मीठा ख्वाब लिए दो दीवाने आंखों के जुबान से गुनगुना रहे हैं।

तपस्या फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज में। एमजी हशमत की रचना थी, रविंद्र जैन ने धुन बनाई थी। दूरियों में बेकरारी थी, निगाहों में जब आप नहीं होते हैं तो जाने आपकी मौजूदगी की अहमियत को। क्यों ऐसा होता है, पास होने से एहसास तक नहीं होता कितनी जरूरत है आपकी मौजूदगी का, कितनी जरूरत है इन होठों को तराने गुनगुनाने के लिए आपके साथ का, कितनी होती है वो घड़ियां कीमती जब आप होते हैं हमारे आसपास। सुहानी रुत आवाज़ थी।

मेला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे युगल स्वर थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, आर डी वर्मन ने धुन बनाई थी। सुन लीजिए तो अर्ज करें हम, मान लीजिए तो क्या कहना, अपने दिले बेताब की हसरतें कुछ ऐसी है, तमन्ना दिल को बस आपकी है, नजरों की बेताबियां आपको देखकर ही चुप होती है, ये बहारी ये चमन मेरे लिए तभी रंगीन है जब आप यहाँ दिखते हैं, आपके दीदार की लगन हमेशा हमें रहती है।

आया सावन झूम के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने धुन सजाई थी। हसरते दिले बेताब का क्या कहना, बहारी चमन में आ मिलके खेलते हैं रंगीन छुपने मिलने के मीठे खेल को।

चीनी की राह फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। आनंद बख्शे के बोल थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के गीत के साथ कार्यक्रम मुखाव भाव गीत यही

0: एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। 12:30 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना।
1: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

अंगना के सभी श्रोताओं को दोस्त और बहन जयश्री का प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो कितना धुला धुला, कितना हरा हरा, बहुत सुंदर सा लगता है ना नज़ारा। और बारिश के मौसम में हरियाली से हर कोई जुड़ना चाहता है, देखना चाहता है, और सच भी तो है कि आँखों को ये सुकून देता है। और बहनों, हम सब इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। परिवार को प्रकृति के करीब लाना और पौधों की देखभाल करना एक ऐसा खूबसूरत कदम है जो न केवल घर को सुंदर बनाता है बल्कि पूरे परिवार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। बहनें अक्सर घर की धुरी होती हैं, इसलिए उनकी एक छोटी सी पहल पूरे परिवार की जीवन शैली को बदल सकती है। घर में प्रकृति का स्पर्श लाने और पौधों का ख्याल रखने के लिए कुछ बेहद और आसान व्यवहारिक तरीके हम अपना सकती हैं।

0: अब किचन गार्डन को ही ले लीजिए। इसकी शुरुआत बहुत छोटे स्तर पर की जा सकती है। रसोई में इस्तेमाल होने वाली मिर्च, धनिया, पुदीना, मेथी या टमाटर जैसी चीजों को गमलों या बर्तनों में आसानी से उगाया जा सकता है। जब बच्चे अपने हाथ से उगी मिर्च या धनिया देखते हैं, तो वे प्रकृति के चमत्कार को करीब से महसूस करते हैं। घर के अंदर ऐसे पौधे हम लगा सकते हैं जो हवा को साफ रखते हैं, जैसे कि स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट, मनी प्लांट या एलोवेरा। इन्हें बहुत कम धूप और पानी की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें संभालना बेहद आसान है। घर के किसी एक कोने या बालकनी को ग्रीन कॉर्नर का रूप भी दिया जा सकता है, जहां बैठकर पूरा परिवार सुबह की चाय पी सके या साथ में वक्त बिता सके। बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें उनके नाम का एक पौधा लाकर दे दिया जाए। उन्हें रोज सुबह उसमें पानी डालने और उसकी नई पत्तियों को गिनने की जिम्मेदारी सौंपें। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना और संवेदनशीलता बढ़ेगी। रविवार या फिर छुट्टी के दिन परिवार के सभी सदस्य मिलकर पौधों की गुड़ाई करें, सूखी पत्तियां हटाएं और नए पौधे लगाएं। ये एक बेहतरीन फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटी बन सकती है, जो सबको स्क्रीन से यानी कि मोबाइल और टीवी से दूर रखेगी। पौधों की देखभाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है बहनों। अब कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित, यानी ज्यादा पानी देने से भी बड़ी गलती हो सकती है। ज्यादातर पौधे आजकल देखने को मिलता है कि पानी की कमी से नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा पानी देने से और जड़ों के सड़ने के कारण मरते हैं। मिट्टी को छूकर देखें, अगर वो सूखी लगे तभी पानी दें। हर पौधे की जरूरत अलग होती है। इंडोर पौधों को सीधी धूप से बचाएं, जबकि मिर्च या टमाटर जैसे आउटडोर पौधों को कम से कम 4 से 5 घंटे की अच्छी धूप की जरूरत होती है। रासायनिक खादों के बजाय घर की बनी खाद का इस्तेमाल करें। सूखी चाय पत्ती, उबले हुए अंडों का पानी, उसको ठंडा करके, केले के छिलकों का पानी पौधों के लिए बेहतरीन प्राकृतिक पोषण का काम करते हैं। पौधों की पत्तियों पर धूल जमने से वे ठीक से सांस नहीं ले पाती। हफ्ते में एक बार किसी गीले कपड़े से या पानी से छिड़काव करके पत्तियों को साफ जरूर करें। बहनों, जब एक महिला घर में पौधों की देखभाल की संस्कृति शुरू करती है, तो वह अनजाने में ही अपने परिवार को तनाव से दूर शांत और एक स्वस्थ वातावरण की ओर ले जाती है। प्रकृति के साथ बिताया गया हर एक पल जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है, और यही सकारात्मकता जो है, हम सबको इसकी जरूरत है। जब हम बड़े पैमाने पर प्रकृति और हरियाली की बात करते हैं, तो बात आती है वनों की, और इन वनों को किस तरह से सहेजना है ये भी जरूरी है, क्योंकि वन हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। वनों का महत्व, इस विषय पर हम सुनते हैं भेंटवार्ता वन महोत्सव के अवसर पर। भेंट वार्ताकार हैं पर्यावरणविद, भूगोल की व्याख्याता रही, एचओडी रही डॉक्टर प्रभा खलखो। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। अंगना के सभी श्रोताओं को हम बता दें कि हमारी जिंदगी में जिस तरह से सांस लेना जरूरी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उतना ही जरूरी है, और हमारे आसपास नमी भी, बारिश भी, और भी न जाने कितने फायदे हैं हमारे इन वृक्षों के, इन पेड़ पौधों के, और इन्हीं पेड़ पौधों से बनता है हमारा वन। और वन हमारे जीवन और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कितने जरूरी हैं, ये सब कमोबेश हम सब जानते हैं। लेकिन वनों का क्या महत्व है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध भूगोल की व्याख्याता रह चुकी प्रोफेसर प्रभा खलखो जी से। सबसे पहले हमारे अंगना कार्यक्रम में आपका, प्रभा मैम, बहुत बहुत स्वागत है।
1: स्वागत स्वीकार है हमें, और हमारे तरफ से सबको नमस्कार, जोहार।
0: दरअसल हम वनों के महत्व पर बात कर रहे हैं मैम, और वन कम होते जा रहे हैं, इस कारण जो है कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। तो हमारी बहनों को सबसे पहले ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में वन हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कैसे करते हैं?
1: देखिए, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में वन हमारे लिए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं।
0: जी,
1: ये न केवल बढ़ते तापमान को नियंत्रित करते हैं, बल्कि मौसम से होने वाले जो दुर्घटनाएं होती हैं, विपदाएं आती हैं, उससे भी हमें बचाते हैं ये। और अब इसको हम अगर बिंदु वाइज जाएं, पॉइंट वाइज जाएं, तो समझने में आसान होगा हम लोगों के लिए।
0: जी।
1: तो सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये वन जो है वो तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं।

0: पेड़ पौधे जो हैं ये पत्तों के माध्यम से वाष्पीकरण की क्रिया करते हैं और इससे क्या होता है कि स्थानीय तापमान जो है वो कम हो जाता है और वातावरण में ठंडक पड़ता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है, प्राकृतिक एयर कंडीशनर के रूप में काम करता है। हम लोग जैसे रूम सब में डालते हैं ना एयर कंडीशन के लिए, दूसरी तरह से ये वन जो है हमारे लिए क्या करते हैं, एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। ये तो पहली बात हुई। और जैसे आप कह रही थी कि ऑक्सीजन हमको मिलता है और जो जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, तो ये भी मैं समझाना चाहूंगी कि ये वातावरण से क्या करते हैं, भारी मात्रा में वन के जो वृक्ष होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं
1: जी।
0: और सूर्य प्रकाश की सहायता से ये क्या करते हैं, उसका उपयोग अपने तनों के लिए, पत्तियों के लिए और जड़ों के निर्माण के लिए करते हैं और बदले में क्या देते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, है ना। तो ये हमारे जीवन के लिए क्या सुरक्षा कवच के रूप में तो काम करते ही हैं, लेकिन हमारे जीवन को भी ये क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं और जिंदा भी रहते हैं।
1: और वनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे चीज भी मिलते हैं जिससे हमारा जीवन आसान होता है, चाहे लकड़ी हो, फल हो, फूल हो, हवा हो कि नमी हो कि बारिश हो, मिट्टी का कटाव रोकते हैं।
0: और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि ये मेन हम लोगों के लिए जो जरूरत होता है वर्षा, अभी तो वर्षा का मौसम भी आ गया है, तो ये क्या करते हैं, वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, है ना, बादल को आकर्षित करते हैं जिससे क्या होता है, वर्षा होता है। तो हमारा भारत जो है वो क्या है, गांवों का देश है, तो यहाँ पर क्या होता है, अधिकतर कृषि कार्य लोग करते हैं, तो कृषि कार्य के लिए क्या है, वर्षा बहुत आवश्यक है। तो उससे क्या होता है कि अन्नों का उपज आसानी से हो जाता है, पानी जरूरत है उसके लिए,
1: और
0: तब हम क्या करते हैं, ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हमको भोजन की आवश्यकता भी है तो हमें वो भी मिल जाता है। तो इस तरह से क्या है, वन बहुत ही आवश्यक है और हमारे जीवन की सुरक्षा इस तरह से भी ये करते हैं।
1: मतलब ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी जरूरी है, और ना सिर्फ हमारे जीवन के लिए बल्कि हम इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों के लिए। जैव विविधता को बनाए रखने में भी वनों की भूमिका है, और वनों के नष्ट होने से इन पर क्या असर पड़ रहा है और क्या भूमिका है वास्तविकता में, कृपया ये भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: जैव विविधता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वन, क्योंकि ये केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं है
1: जी।
0: ये एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है और ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है, संतुलन बनाए हुए रखता है। विशेषकर अगर हम वन्य जीव की बात करें या जैव विविधता की बात करें, तो ये क्या है, जीवों के लिए, वन्य जीव के लिए विशेषकर प्राकृतिक आवास है
1: जी।
0: क्योंकि उनका घर है ये, और जैसे कहा जाता है कि 80% स्थलीय प्रजातियां जो वहाँ पाई जाती हैं ना, पशु पक्षी हैं, कीट हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो उनका घर है। और ये पेड़ पौधे जो हैं, और क्या है, वर्षा होता है तो उनको जल भी मिल जाता है वहाँ से
1: जी,
0: तो उनके भोजन के लिए भी आवश्यक है और आश्रय ये प्रदान करते हैं ये वन। क्योंकि हम लोगों के लिए भी जैसे घर की आवश्यकता होती है, हम भी घर में रहते हैं, उसी तरह से जीव जंतुओं के लिए भी क्या है, घर की आवश्यकता होती है, उनका ये प्राकृतिक आवास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वन उनके आवास के रूप में।
1: बिल्कुल, और हमने भी तो जंगलों से ही जीवन शुरू किया, और आज जंगलों को काट कर ही सही, लेकिन हम विस्तृत मैदान बनाकर वहाँ रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम सब वनों पर ही आश्रित हैं, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वनों से हमें जीवन में बहुत सारी सहायता मिलती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वन जो है किसी भी देश या समुदाय को समृद्ध करते हैं,
0: समृद्ध बनाते हैं।
1: किस तरह से समृद्ध करते हैं ये हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हाँ, ये हमारे देश या किसी समुदाय को समृद्ध बनाते हैं इसलिए कि वनों से बहुत सारी उत्पादक वस्तुएं प्राप्त होती है
1: जी।
0: जैसे हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं
1: जी,
0: तो वहाँ पर बहुत बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती हैं, जैसे साल हुआ, सागवान हुआ, शीशम हुआ। और उसके बाद हम अगर सदाबहार और कुंधारी वन की बात करें, तो वहाँ पर कैसी लकड़ियाँ मिलती हैं, मुलायम लकड़ियाँ मिलती हैं। ये सभी व्यावसायिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। और अगर हम उद्योग की बात करें, तो उद्योगों के लिए वनों से क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है
1: जी
0: और इस तरह से उससे बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे हम कहेंगे फर्नीचर हुआ, कृषि के उपकरणों का निर्माण होता है, रेल की पटरी का निर्माण होता है, भवन के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये अर्थव्यवस्था को आगे की ओर बढ़ाती है।
1: और

0: सारी दवाइयां भी पेड़ पौधों से बनाते हैं हम,
1: हाँ
0: जैसे
1: कई
0: कि
1: सारी
0: कैंसर के
1: दवाइयां
0: लिए
1: भी,
0: कुनैन प्राप्त करते
1: हाँ
0: हैं।
1: कुनैन प्राप्त करते हैं। तो ये जो है व्यवसाय जो है ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वहां से जंगलों से बहुत सारे फल फूल और उसके बाद पत्तियां भी वहां से लेते हैं, वे
0: जड़ी बूटियां,
1: जड़ी बूटियां भी लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं बाजार में बेचते हैं, तो उससे उनको आय प्राप्त होता है। और हम अगर आदिवासियों की बात करें तो वे वन से जुड़े हुए हैं, उनका आजीविका वनों पर बहुत अधिक आधारित होता है, तो वे लोग वन से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं और अपना आजीविका भी चलाते हैं, वे सिलावन की लकड़ियां भी उसी से प्राप्त करते हैं। उनका सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज जो होते हैं वे भी क्या है वनों से जुड़े हुए हैं।
0: और हमारी भारतीय संस्कृति में तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की पूजा करने का भी रिवाज है,
1: तो वे क्या करते हैं इसको सुरक्षित रखते हुए भी उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं सुरक्षित भी रखते हैं। और ये देश की अर्थव्यवस्था भी आगे की ओर बढ़ता है, क्योंकि जैसे उससे क्या होते हैं उद्योग धंधे जो खोले जाते हैं उनसे बहुत तरह की वस्तुएं जो तैयार की जाती हैं, तो
0: उसकी
1: वो
0: पैकेजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता
1: के लिए, हाँ, तो इस तरह से देश को भी समृद्ध बनाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के समुदाय को भी
0: समृद्ध करते
1: वन
0: हैं
1: के द्वारा, हाँ समृद्ध करते हैं। और
0: तो तेजी से होते शहरीकरण और औद्योगिक विकास के बीच वनों को बचाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और साथ ही वनों की कटाई और जंगलों में आग भी लगने की समस्याएं सामने आती हैं, तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास क्या ठोस नीतियां होनी चाहिए मैम?
1: देखिए यहाँ जो है अब तेजी से शहरीकरण और औद्योगिक विकास तो होते ही जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आबादी बढ़ रही है ना, आबादी बढ़ रही है तो इससे आवासीय इलाकों का विस्तार हो रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो रहा है वनों पर अतिक्रमण हो रहा है कहना चाहिए, है ना,
0: जी जी,
1: उद्योग
0: लगाए जा रहे हैं
1: तो इसके लिए नष्ट किए जा रहे, तो सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी एक और चुनौती हम बतलाना चाहेंगे कि अवैध कटाई भी हो रहा है और इसमें कौन काम करते हैं माफिया जो है, अवैध कटाई जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए।
0: तो यहाँ पर कुछ लकड़ी की तस्करी और अवैध शिकार भी है और अवैध कटाई के लिए कुछ कानूनी उपाय भी हुए हैं, कानून व्यवस्था भी लागू है, तो वो कहाँ तक सफल है और जो आग लगने वाली समस्या और वनों की कटाई के लिए किस तरह से इसका समाधान होना चाहिए, क्या नीतियाँ होनी चाहिए?
1: इसका जो कटाई होता है वनों का, जंगलों में लगने वाली आग की बात जो है, तो इसके लिए सब कानून होना चाहिए और उस कानून को जो लागू करना है तो सख्ती से लागू होना चाहिए, जैसे उल्लंघन करने वाले जो हैं तो उनके लिए जेल का भी ये होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए और
0: सख्त कानूनी सजा का प्रावधान होना चाहिए,
1: हाँ प्रावधान होना चाहिए। और इसमें क्या है कि स्थानीय समुदायों को मिलाकर ले चलने से क्या है कि उस वनों की कटाई जो होती है उसको बचाया जा सकता है।
0: आपका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर स्थानीय लोग खुद सजग हों और प्रहरी बन जाएं जंगलों के, तो बेशक वनों को काटने से और अवैध तस्करी से रोका जा सकता है। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है भैरव डाकव जो आपका है राजस्थान में सेंचुरी है, जिसे समुदाय ने ही बनाया है वहाँ के वन्य जीव और जंगलों को संरक्षित करने के लिए।
2: हाँ। बहनों अभी आप सुन रही हैं वनों का महत्व विषय पर भेंट वार्ता और भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभा खलखो। बहनों अभी बातें और भी बाकी हैं, आग से कैसे निपटें और उनके संदेश भी हम सुनेंगे, और भी बातें होंगी, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रहा है कि जंगलों के रास्ते से जब हम गुजरते हैं तो उन हसीन वादियों में कहीं दिल खो जाता है, और इसी बात पर मुझे याद हो आया प्यासा सावन का ये खूबसूरत गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

0: बहनों, इस खूबसूरत गीत के बाद अब अपनी बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रभा खलखोजी, आप अपनी बात जारी रखिए।
1: आपकी समस्या से निपटने के लिए अभी तो बहुत सारे आधुनिक तकनीक भी आ गए हैं, तो उस तकनीक का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे उपग्रह के द्वारा, है ना, सैटेलाइट के द्वारा अलर्ट सिस्टम जो है उसका विस्तार होना चाहिए। उससे जल्द पता चलेगा और जंगलों में जो आग लगा है उसको कम किया जा सकता है। और स्थानीय दस्तों का भी गठन करना चाहिए ताकि वनों के नजदीक रहने वाले ग्रामीण जो है वे उसको जल्दी बुझा सकते हैं। उनको क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको बतलाना चाहिए कि किस तरह से आग पर काबू पाया जा सकता है।
0: और छोटी छोटी गलतियों से लोगों को रूबरू कराया जाए कि आपकी ये छोटी सी गलती जो है माचिस की तीली है या फिर सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह से भी जंगल में आग पकड़ सकता है, तो इसलिए उसको भी रोकना जरूरी है। अवेयरनेस के भी पोस्टर्स अगर लगाए जाएं तो मेरे ख्याल से बाहरी लोगों के लिए भी सुविधाजनक होगा और उन्हें भी समझ में आएगा कि इस तरह से हम जंगल बचा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान

0: और साथ साथ में मिल करके वो जंगल को बचाने में सार्थक हो सकते, तो इस तरह
1: सार्थक पहल कर सकती है। जैसे कि
0: हाँ
1: हमारे आसपास ही जमुना टुडू जी हैं जो पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही आगे गई हैं और भारत सरकार से सम्मानित भी हैं।
0: सम्मानित भी की गई है, तो इस तरह
1: जी
0: से महिलाएं भी आज बहुत आगे आ रही हैं।
1: जब महिलाएं जागरूक होंगी, महिलाएं इस तरफ सजग रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को भी इसी तरह के
0: बच्चों को
1: संस्कार
0: भी
1: होंगे।
0: और वे आगे की ओर आएंगे। और स्कूली बच्चे जैसे होते हैं
1: जी,
0: तो उनके बीच पेड़ पौधों के देखभाल के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए
1: जी।
0: और कुछ ऐसा प्रोग्राम भी करना चाहिए जिससे उनको मार्क्स भी उसमें अंक भी देना चाहिए, ताकि वे प्रोत्साहित होंगे कि हम लोगों को इससे मार्क्स भी मिल रहे हैं, अंक भी हम लोगों को दिया जा रहा है, तो वे जंगलों को या पेड़ पौधों को बचाने में आगे आएंगे। और जैसे कहा जाता है कि एक छात्र एक पेड़, तो एक छात्र एक पेड़ गोद लेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, तो इस तरह से वृक्ष का बचाव होगा तो फिर जंगल का भी उसी तरह से ये हो जाएगा, समझेंगे कि हाँ।
1: और हर तरफ हरियाली फिर से छाएगी जैसे हमारे पुरातन काल में था।
0: युवाएं जो हैं वे स्थानीय समुदायों के पास जा करके नुक्कड़ नाटक भी कर सकते हैं, दिखला सकते हैं उसको, और उनके बीच जंगल को बचाने के लिए जागरूकता वे फैला सकते।
1: एक आखिरी सवाल मैम, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास आज हमारी जरूरत है, तो वो क्या है और हम विकास के साथ साथ वनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?
0: सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास एक मॉडल की तरह है, जैसे हमारा वन है उसको हमको कितना उपयोग करना है ना, वर्तमान समय में हमको कितना उपयोग करना है और भावी पीढ़ी के लिए हमको उसको बचाना भी है, तो हमको उतना ही उपयोग करना है जितना हमको आवश्यकता है, और उसके बाद भावी पीढ़ी के लिए भी उसको बचा करके।
1: मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की अवधारणा ही ये है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और उसको सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे चलाना है। तो ऐसे में तो वनों को सुरक्षित रखने के तरीके भी ढूंढे ही जा रहे हैं कि आखिर वनों को, पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित रखते हुए हम विकास करें।
0: अच्छा, उसमें क्या है कि जैसे वनों को काटा जाता है, जरूरत है
1: जी,
0: तो उन पेड़ों के बदले वहाँ पर फिर नए पौधे लगाए जाने चाहिए ताकि उसका भरपाई हो सके।
1: अगर 100 वृक्ष काटे गए हैं तो 100 वृक्ष अन्यत्र कहीं लगाकर पुनः पूर्ति की जाए।
0: हाँ, और उसके बाद जैसे पेड़ों का कटाई होता है तो अंधाधुंध कटाई नहीं करना चाहिए, जैसे छोटे बड़े सबको नहीं कटना चाहिए, उसमें जैसे है कि जो पुराने पेड़ है, परिपक्व पेड़ है, उन्हीं को काटना चाहिए ताकि पारिस्थितिकी तंत्र भी सुरक्षित रहेगा, और उसके बाद जो छोटे पेड़ हैं वे बड़े होंगे तो उसकी भरपाई हो सकता है, तो वहाँ के वन्य जीव के लिए भी हानिकारक होगा और पूरा कट जाएगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन भी होगा, तापमान बढ़ेगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वृक्ष वो भी कम हो जाएगा, तो हम लोगों को ऑक्सीजन भी
1: कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन बढ़ेगी और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होगा और एक तरह से कहें तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा।
0: तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है, वो वर्तमान के लिए जो आवश्यक है उतना ही हमको यूज करना है और विकास भी करना है, लेकिन
1: भविष्य के लिए संरक्षित भी रखना है,
0: संरक्षित भी रखना है।
1: तो अंत में आप हमारी बहनों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को वनों के महत्व को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: हमारी बहनों को और युवा पीढ़ी या बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वन है तो हमारे जीवन का अस्तित्व है, जो हमें शुद्ध हवा, पानी और जीवन देते हैं। ये केवल पेड़ पौधे नहीं है, ये वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक घर हैं, वर्षा लाने के प्रमुख स्रोत हैं, तापमान को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, हमारे जीवन के लिए ये अति आवश्यक है। ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाते हैं, कैसे पत्तियां सड़ गल जाते हैं तो ह्यूमस नामक खाद बनता है जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है, और जब ये हमारे खेत में यूज किए जाते हैं तो ये हमारे अन्न उपजाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को ये संतुलित बनाए रखते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये जड़ी बूटियाँ जो मिलते हैं वे बहुत आवश्यक हैं, भोजन भी यहाँ से प्राप्त होता है, जैसे कंदमूल प्राप्त होते हैं, वहाँ पर महुआ का वृक्ष भी होता है, महुआ का वृक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसका फूल भी महत्वपूर्ण है, उसका फल भी महत्वपूर्ण है, अगर हम देखें उसका छाल भी महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष भी जंगल में पाए जाते हैं, तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि वृक्ष को हमको बचाना है, और ये जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे ग्रामीण क्षेत्र में कहिए, शहरी क्षेत्र में कहिए, ये समृद्ध बनाते हैं
1: जी,
0: है ना,
1: लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देते हैं और इसे स्थापित करने का एक रास्ता देते हैं, एक पाए रहते हैं।
0: इससे हमारा आर्थिक स्थिति भी मजबूत होता है और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों को कायम रखने में ये सहायक होते हैं वन।
1: और हमारा झारखंड तो है ही जंगल और जल और जमीन का राज्य।

0: इसलिए हम लोगों के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है कि वनों के महत्व को हम लोगों को समझना होगा और उसको सुरक्षित रखना होगा और उपयोग में लाए गए लकड़ियों के बदले वृक्षारोपण करना होगा। वन है तो सांस है, सांस है तो आस है, आस है तो जीवन का एहसास है। ये हमारा स्लोगन हमने बनाया है।
1: बहुत बहुत अच्छा। और ये नारा मैं हमारी बहनों से भी चाहूंगी कि आप भी अपने जीवन में इसे उतारिए, इसे महसूस कीजिए।
0: हाँ,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभा खलखो जी कि आपने हमारे बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।
2: बहनों अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता वनों का महत्व विषय पर और भेंटवार्ताकार थी डॉक्टर प्रभा खलखो। बहनों हमने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हम मना रहे हैं वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक और ये पूरे देश में मनाया जाता है। अब बहनों आप सोच रही होंगी कि जुलाई का पहला सप्ताह है क्यों, तो इसलिए चुना गया है क्योंकि इस समय भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून की शुरुआत होती है जो पौधों के जीवित रहने और उनके विकास के लिए सबसे अनुकूल होते हैं। और बहनों एक पेड़ माँ के नाम 3.0 इस वर्ष भी जारी है। पहले एक पेड़ माँ के नाम 2.0 पिछले साल था और इस बार 3.0 है। और इस अभियान के जरिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हर नागरिक से अपनी माँ के सम्मान में कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आग्रह किया जा रहा है। इस बार का मुख्य संदेश केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि पुराने और परिपक्व पेड़ों को बचाने और लगाए गए पौधों की दीर्घकालिक देखभाल करने की भी है। और फिलहाल वक्त का ये इशारा है कि हमें आपसे लेनी होगी विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त और बहन जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।
3: अंगना, महिलाओं का कार्यक्रम अपना अंगना।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा कार्यक्रम अंगना। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।

0: भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to CSEM. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said under this act over 7

Değişik Samaçarka. आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। वीवीजी रामजी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय अंडर-9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देश भर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने विकसित गांव बनाने का संकल्प

0: व्यक्त किया।
1: प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो। सजग रहना है, सचेत रहना है, ताकि बिना किसी गड़बड़ और अनियमितता के हम मजदूरों को रोजगार देने का काम और विकसित गाँव बनाने का काम के हमारे संकल्प को हम पूरा कर सकें।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए एक वीडियो तैयार किया गया है, जिसका शीर्षक अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में है। उन्होंने इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करने की अपील की है। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने दावा किया कि उन्हें भी गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 1 जुलाई को भी उन्हें धमकी मिली थी और इससे पहले भी कई बार ऐसे कॉल आ चुकी हैं। इस संबंध में उन्होंने धनबाद के SSP और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत दी है।
2: हमें प्रिंस खान से धमकी आया 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया। ये जिला प्रशासन को मैंने सूचना दे दिया है। जिला प्रशासन का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, राज्य सरकार का काम है। 2-2 बार 3-3 बार हम गृह मंत्री से मिल चुके हैं। हर क्रिमिनल का घर ढहना चाहिए, उसका पहले करना चाहिए।
0: भारत की पहली मेड इन इंडिया कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप की पहली खेप कल गुजरात के सानंद स्थित CG सेमीकॉन ओसैट प्लांट से अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए रवाना की गई। इस ऐतिहासिक अवसर पर जमशेदपुर की बेटी तनीषा गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे संवाद कर पूरे झारखंड का मान बढ़ाया। आकाशवाणी से बात करते हुए तनीषा गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में झारखंड की बेटियों की सराहना की।
3: प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी भी लड़कियां झारखंड से थी, जमशेदपुर से थी, इन सारी लड़कियों की बहुत ज्यादा सराहना की है कि झारखंड एक ऐसा पिछड़ा हुआ राज्य जहां पर आज भी बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, वो सारी लड़कियां अपने घर से 2700 किलोमीटर दूर आके गुजरात में काम कर रही है, सेमीकंडक्टर में काम कर रही है। ये हमारे पूरे देश के लिए, जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है।
0: CISF ने प्रशासनिक फेरबदल करते BCCL धनबाद के नए DIG के रूप में राजीव मिश्रा की नियुक्ति की है। वहीं यहां पदस्थापित DIG जितेंद्र कुमार तिवारी का तबादला BSL बोकारो कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@EIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@EIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के बहुचर्चित 16 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में CBI की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्लासिक कोल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दिलीप कुमार सिंह को दोषी ठहराया है। CBI के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने उन्हें 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1,00,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने मामले में ट्रायल का सामना कर रहे तत्कालीन जूनियर इंजीनियर सुरेश शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भांग को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कैनबिस की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। जस्टिस PK श्रीवास्तव की अदालत ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 7 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा पाए सुनील सिंह को बरी कर दिया। जमशेदपुर के जुगसलाई में कपड़ा दुकानदार पर रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सिटी एसपी ललित मीणा

0: संवाददाताओं को बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहित बाग को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी।
1: फायरिंग की घटना हुई थी, बाद में जब अनुसंधान किया तो उसमें पता चला कि ये फायरिंग रंगदारी मांगने के इंटेंशन से, धमकाने के इंटेंशन से की गई थी। 9 जने पहले पकड़े जा चुके हैं। गाड़ी की बरामदगी हो चुकी है, 5 देसी पिस्टल की बरामदगी हो चुकी है, खोखा और जिंदा गोलियां की बरामदगी हो चुकी है और ये व्यक्ति मोहित बाग पकड़ा गया।
0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपये प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी पश्चिमी भाग में बने निम्न दबाव क्षेत्र और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड के मौसम पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कल से 12 जुलाई तक रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय महिलोंग में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से 438 प्रतिभाशाली बाल शतरंज खिलाड़ी अपनी रणनीति, कौशल और बुद्धिमता का प्रदर्शन करेंगे। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ एक टीम की तरह कार्य करते हुए सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां तय समय सीमा के भीतर पूरी करने पर जोर दिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वीवीजी रामजी के तहत राज्यों को मदर सैंक्शन की प्रथम किस्त का आवंटन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित गांव बनाने का व्यक्त किया संकल्प। निर्वाचन आयोग ने झारखंड में एसआईआर अभियान को लेकर मतदाताओं की सुविधा और एन्यूमरेशन भरने के लिए साझा किया वीडियो, लोगों से शेयर करने की अपील। अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कंपनी के निदेशक को सुनाई 3 साल की सजा, इंजीनियर बरी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का झारखंड में असर। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। और रांची में कल से 12 जुलाई तक राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और बालिका शतरंज चैंपियनशिप का होगा आयोजन। देशभर से 438 खिलाड़ी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM के 102.4 MHz पर।

0: This is Kamakshi with U Times from Akashvani Jamshedpur. We all have a phone in our hands, but have you ever thought about what's really inside it? Today on U Times, we are asking a simple question. Are we using technology or is technology using us? You'll hear voices from Jamshedpur share their take on tech balance and real life. Plus, we dive into rare earth elements, the tiny things that power your phone and matter big for India's future. And of course, I have got employment news for you too. U Times, question, connect and create. Join me this evening at 5:02 PM on FM 102.4 MHz, Akashvani Jamshedpur.
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।

0: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
3: ज्ञान विज्ञान
4: इतिहास के पन्नों से,
3: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
2: मौसम का मिजाज,
3: अपने शहर की खबरें,
4: बातों मुलाकातों के साथ
2: सुरीला मनोरंजन
3: और भी बहुत कुछ।
2: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 तक
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
2: नमस्कार जमशेदपुर।
5: प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आदित्य रेखारी और तुलसी कुमार की आवाजें थी। फिल्म थी भूल भुलैया 3। शब्द रचना थी आदित्य रेखारी की। संगीत दिया था आदित्य रेखारी, डीजे चेतस और लीजो जॉर्ज ने।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फ़ोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
1: हेलो डॉक्टर।
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-296-0445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-296-0445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
1: हेलो डॉक्टर।

फिलहाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और के एस चित्रा के स्वर में, अनु मलिक के संगीत पर। शब्दकार थी गुलजार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, आकाशवाणी जमशेदपुर से।

जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए

ये कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क।

0: रक्षाबंधन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया की आवाज में, बोल थे इरशाद कामिल के, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है।

विशाल मिश्रा और साथियों की आवाज थी मेट्रो इन दिनों फिल्म का। ये गीत आप सुन रहे थे प्रीतम की धुन पर, बोल थे नीलेश मिश्रा के। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम नगमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन

0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय

0: सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: दिन दिन उम्र ढलते है जैसे पानी में घूरा ढेला।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
4: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का प्रसारण है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारे दिवाकालीन प्रसारण। 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

सुधा मल्होत्रा और अनवर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। प्रेम रोग फिल्म का गीतकार थे संतोष आनंद, संगीतकार लक्ष्मी।

जयदेव की धुन पर यह गीत आप सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी का रचा हुआ, लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म थी लैला मजनू।

किशोर कुमार की आवाज थी मजबूर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे, आपकी कसम फिल्म से। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये सफर यहीं पर खत्म हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम की 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:55 होने वाले हैं। अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार।

0: निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत रांची जिले में इन्यूमिनेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर BLO आज सुबह से ही घर घर जाकर मतदाताओं के बीच फॉर्म का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी BLO को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन सुबह अधिक से अधिक घरों तक पहुंचकर फॉर्म का वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करें। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री मरांडी ने आज बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात सकारात्मक और सार्थक रही। पूर्व मंत्री और गिरिडीह से सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा है कि महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करवाना उनकी पार्टी का लक्ष्य है। श्री चौधरी रांची में आजसू पार्टी की सहयोगी संगठन अखिल झारखंड महिला संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
1: एक एक महिलाएं हर एक बूथ पर रहेगी, उसके बारे में उनको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं ताकि जेन्युइन वोटर है उनका नाम नहीं कटे और फर्जी वोटर है उसका नाम हटाया जाए। यह ट्रेनिंग अभी भी हमारी पार्टी की ओर से चल रहा है और जो आरक्षण देने की बात है नौकरी में, लोकसभा में भी बिल पास हुआ लेकिन विरोध किया गया विपक्ष के द्वारा। ये बातें महिलाओं को बताना ज्यादा जरूरी है कि कौन के साथ खड़ा है और कौन आपको धोखा दे रहा है।
0: केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और उसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक आपराधिक अपराध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में आज सुबह एड्स जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइकिलोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम लोगों और युवाओं ने साइकिल से यात्रा की। मौके पर झारखंड राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष कुमार गौरव ने कहा कि जागरूकता से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है।
2: प्रथम और मुख्य मुद्दा एक ही है, एड्स के प्रति जागरूकता।

0: मैं जमशेदपुर के लोगों का, खासकर सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सुबह सुबह यहाँ आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। एंड सबसे जरूरी बात यह है कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, ठीक है, तो बचाव ही उसका क्योर है।
1: राजधानी रांची में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बीती देर रात विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब बार रेस्तरां के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की। श्री रंजन ने बताया कि जिन पब और बार में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। राज्यपाल संतोष गंगवार ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक जताया है। गायिका लंबे समय से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई थी। उनका निधन कला एवं संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी रांची से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है, FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है रोजगार समाचार। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 1500, जिनमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 588 पद हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 390, अनुसूचित जाति के लिए 234, अनुसूचित जनजाति के लिए 144 रिक्तियां हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 144 पद हैं। शैक्षणिक योग्यता के तहत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन के पात्र हैं, बशर्ते साक्षात्कार के समय उन्हें 30 सितंबर 2026 या उससे पहले स्नातक परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 अप्रैल 1996 से 1 अप्रैल 2005 के बाद न हुआ हो। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में सरकारी नियम के अनुसार छूट दिया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹750 देने होंगे, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना है। उम्मीदवारों का चयन 3 चरणों के माध्यम से किया जाएगा। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ ऑनलाइन परीक्षा होगी। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा के साथ एक वर्णनात्मक टेस्ट भी शामिल होगा। तीसरे चरण के अंतर्गत साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं https://sbi.bank.in।

रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल रिक्तियां हैं 6,557, जिनमें से टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 323 रिक्तियां हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद के लिए 6,234 पद हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन में बीएससी या संबंधित स्ट्रीम में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या बीई बीटेक करने वाले आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होना अनिवार्य है। आयु सीमा टेक्नीशियन 1 ग्रेड के लिए 18 से 33 वर्ष है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में सरकारी नियम के अनुसार छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क ₹500 है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ₹250 शुल्क के रूप में देने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आकाशवाणी जमशेदपुर से रोजगार समाचार समाप्त हुए।

0: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहां की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति, रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन EIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के दिवाकालीन कार्यक्रम। आइए सुनते हैं सुगम संगीत कार्यक्रम के तहत सूफी गीत। कलाकार हैं आबिदा परवीन।

आबिदा परवीन की आवाज में आप सुन रहे थे सूफी गीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर और इस समय 3:15 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत का। तो आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं भोला शंकर सामद और उनके साथी, आइए सुनते हैं उनकी पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत में आप सुन रहे हैं मुंडारी लोकगीत। कलाकार हैं भोला शंकर सामद और उनके साथी। लीजिए सुनिए इनकी अगली प्रस्तुति।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत। इस कार्यक्रम में आपने सुना मुंडारी लोकगीत। कलाकार थे भोला शंकर सामद और उनके साथी। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।

0: जहाँ लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहाँ की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है। जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति रविवार 26 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: दिस इज कमाक्षी विथ यू टाइम्स फ्रॉम आकाशवाणी जमशेदपुर। वी ऑल हैव अ फोन इन आवर हैंड्स, बट हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट्स रियली इनसाइड इट? Today on You Times, we are asking a simple question. Are we using technology or is technology using us? You'll hear voices from Jamshedpur share their take on tech, balance and real life. Plus, we dive into rare earth elements, the tiny things that power your phone and matter big for India's future. And of course, I have got employment news for you too. You Times, question, connect and create. Join me this evening at 5:02 PM on FM 102.4 MHz, Akashvani Jamshedpur.
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर FM 102.4 MHz पर। आइए सुनते हैं उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत बांसुरी वादन राग मिश्र पीलू में। कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।

0: उप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बांसुरी वादन राग मिश्र पेलू में। कलाकार थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया।
1: पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
2: ये आकाशवाणी जमशेदपुर है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर, और आइए अब सुनते हैं कुछ लोकगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अंगिका लोकगीत। कलाकार हैं हरिवंश प्रसाद सिंह। लीजिए सुनिए उनकी पहली प्रस्तुति।

हरिवंश प्रसाद सिंह और उनके साथी से आप सुन रहे हैं मगही लोकगीत। लीजिए सुनिए इनकी अगली प्रस्तुति।

0: कार्यक्रम लोकगीत में आप सुन रहे थे मगही लोकगीत, कलाकार थे हरिवंश प्रसाद सिंह और उनके साथी। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है, हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।
1: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश आकाशवाणी रांची से।
2: समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत रांची जिले में इन्यूमरेशन फॉर्म के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य तेज है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजेंद्र के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल ऑफिसर BLO आज सुबह से ही घर घर जाकर मतदाताओं के बीच फॉर्म का वितरण और संग्रहण कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच संगठन को मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक रणनीति और विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री मरांडी ने आज बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई मुलाकात सकारात्मक और सार्थक रही। केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। राजधानी रांची में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बीती देर रात विशेष अभियान चलाया। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की कई टीमों ने एक साथ विभिन्न क्षेत्रों में सड़क किनारे मादक पदार्थों का सेवन करने वालों और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब, बार, रेस्तरा के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की। राज्यपाल संतोष गंगवार ने छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉ. तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक जताया है। गायिका लंबे समय से बीमार थी और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्यपाल ने कहा कि उनका निधन कला एवं संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 9 जुलाई तक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। शाम के 4:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं सामुदायिक गीत पाठ के तहत उड़िया लेसन।
1: बच्चों, आज मैं तुम्हें एक उड़िया गाना सिखाऊंगा। सीखोगे ना?
2: हाँ।
1: ये गाना एक भजन है जिसे श्री कालिंदी चरण पाणिग्रही ने लिखा है। किसने लिखा है?
2: श्री
1: कालिंदी चरण पाणिग्रही ने। अब इसे लिख लो।
3: क्यों नाम धरी,
2: क्यों नाम धरी,
3: डाकिबि तुमको,
2: डाकिबि तुमको,
3: तुमे जे सर्वनाम,
2: तुमे जे सर्वनाम,
3: केऊ नाम धरी,
2: केऊ नाम धरी,
3: डाकिबि तुमको,
2: डाकिबि तुमको,
3: तुमे जे सर्वनाम,
2: तुमे जे सर्वनाम।
1: यह हुआ ध्रुपद। अब पहला अंतरा लिख लो।
3: आलोक तुमको,
2: आलोक तुमको,
3: नपारे देखाई,
2: नपारे देखाई,
3: तुमे जे देखाओ ताहारे,
2: तुमे जे देखाओ ताहारे,
3: आलोक तुमको,
2: आलोक तुमको,
3: नपारे देखाई,
2: नपारे देखाई,
3: तुमे जे देखाओ ताहारे,
2: तुमे जे देखाओ,
3: तुमे जे बेढ़ी चो,
2: तुमे जे बेढ़ी चो, कोटी विश्वर,
3: सबुरी भीतरे बाहरे,
2: सबुरी भीतरे बाहरे,
3: तुमे जे बेढ़ी चो,
2: तुमे जे बेढ़ी चो,
3: कोटी विश्वर,
2: कोटी विश्वर,
3: सबुरी भीतरे बाहरे,
2: सबुरी
1: भीतरे बाहरे। ये हुआ पहला अंतरा। अब दूसरा अंतरा।
3: लुहा होई तुमे,
2: लुहा होई तुमे,
3: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
3: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
3: लुहा होई तुमे,
2: लुहा होई तुमे,
3: झरी पड़ा परा,
2: झरी पड़ा परा,
3: केते नयनर कोणरु,
2: केते नयनर कोणरु,
3: हस होई पुणी,
2: हस होई पुणी,
3: फूला परी फुट,
2: फूला परी फुट,
3: केते जे नरम अधरु,
2: केते जे नरम अधरु,
3: हस होई पुणी,
2: हस होई पुणी,
3: फूला परी फुट,
2: फूला परी फुट,
3: केते जे नरम अधरु,
2: केते जे नरम अधरु,
3: केऊ नाम धरी,
2: केऊ नाम धरी,
3: डाकिबि तुमको,
2: डाकिबि तुमको,
3: तुमे जे सर्वनाम,
2: तुमे जे सर्वनाम।
1: अब हम गाना सीखेंगे। ये गाना खेमटा ताल में है। इसकी 6 मात्राएं हैं। ताल कैसा है ये पहले देख लो। इसमें एक ताली और एक खाली है।
3: एक दुई, एक दुई, वो एक दुई, एक दुई, एक दुई।
1: अब हम गाना सीखेंगे।
3: क्यों नाम धरी डाकिबि तुमको, 1 2 3

0: तुमने गाना सीख लिया, इसे अब तुम सब मिलकर गाओ देखें।
1: 1 2 3 4

0: तो अब यह गाना तो आपने सीख लिया, इसे याद रखना, भूलना नहीं। यह गाना तुम भी गाओ, अपने भाई बहनों से गवाओ तथा स्कूल में भी गाओ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे सामुदायिक गीत पाठ के तहत उड़िया लेसन। ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

संवेद स्वरों में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से FM 102.4 MHz पर। शाम के 4:30 होने को हैं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा।

0: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 MHz पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
1: This is Kamakshi with U Times from Akashwani Jamshedpur. We all have a phone in our hands, but have you ever thought about what's really inside it? Today on U Times, we are asking a simple question. Are we using technology or is technology using us? You'll hear voices from Jamshedpur share their take on tech, balance and real life. Plus, we dive into rare earth elements, the tiny things that power your phone and matter big for India's future. And of course, I have got employment news for you too. U Times, question, connect and create. Join me this evening at 5:02 p.m. on FM 102.4 MHz, Akashvani Jamshedpur.
2: Akashvani Jamshedpur ka prasaran aap sun rahe hain FM 102.4 MHz par. शाम के 4:41 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म धड़क 2 के लिए यह स्वर था दर्शन रावल, जोनीता गांधी, रोचक कोहली और साथियों का। रोचक कोहली और शरण रावत का संगीत था, गीत था गुरप्रीत सैनी का।

गुरप्रीत सैनी का लिखा गीत, रोचक कोहली का संगीतबद्ध किया हुआ, आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ों में। फिल्म थी सत्य प्रेम की कथा।

भूत बंगला फिल्म का ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था यतीन्द्र मिश्रा ने, गाया था जावेद अली, श्रेया घोषाल, पृथ्वी गंधर्व और साथियों ने। प्रीतम ने इसकी धुन बनाई थी।

0: आकाशवाणी जमशेदपुर का ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं कुछ ही पलों में आकाशवाणी रांची से प्रसारित प्रादेशिक समाचार मुख्यांश सुनिएगा।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर सशुल्क विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत पलामू जिले में आज निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों और मार्क वोटरों के गणना प्रपत्र EF को भरवाया गया। लोहरदगा स्थित DAV पब्लिक स्कूल में आज सड़क सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। रांची के धुर्बा में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होने वाला है। रथ यात्रा और मेले के सुचारू संचालन के लिए आज मंदिर न्यास समिति, पुलिस प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने बताया कि रथ यात्रा और मेले के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आज से ही सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर में आज सुबह एड्स जैसी गंभीर संक्रामक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम लोगों और युवाओं ने साइकिल से यात्रा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार मुख्यांश का प्रसारण आकाशवाणी के रांची केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM 102.4 MHz पर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: शाम के 5:03 हुए हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम, आज अंग्रेजी में यूथ टाइम्स।

0: पिघलती फौलाद की धमनियों में जहां धड़कता है हिंदुस्तान, तकनीक के ऊंचे शिखरों पर जहां मुस्कुराता है विज्ञान, जो आदिम संस्कृति की माटी को भी माथे का चंदन करता है, वो शहर आज भारत के नवनिर्माण का अभिनंदन करता है। इस पार संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। ये विशेष रेडियो रूपक सुनिए रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में ये आकाशवाणी जमशेदपुर की प्रस्तुति होगी। आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुना जा सकता है।
1: शाम के 5:31 होने को हैं। आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत है श्रमिक साथियों का कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रोता साथी, घड़ी की टिक टिक की ध्वनि हमसे ये कह जाती है कि वक्त कहता है कि मैं ठहरूंगा नहीं। ये तुम्हें तय करना है कि मेरी रफ्तार के साथ तुम साथ साथ चलोगे या मुझे यूं ही गुजार दोगे या गुजरता देखोगे। श्रोताओं, जीवन में कई चीजें जो होकर शायद वापस पाई जा सकती हैं, इनमें धन, पद, अवसर, ये सभी शायद वापस मिल भी जाएं, पर वक्त ऐसा है जो हाथ से फिसल जाए तो लौट कर कभी नहीं आता। श्रोता साथी, समय जिसकी रफ्तार न तो अमीर के लिए रुकती है न गरीब के लिए, निरंतर एक जैसी चाल। जो इनकी कीमत समझकर उसका सदुपयोग कर लेता है वो सफलता प्राप्त कर लेता है। और कुछ लोग सही समय के आने का इंतजार करते रहते हैं और उनका वो सही समय आता ही नहीं या आकर चला जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता। उनकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत उसे कभी सही रास्ते पर नहीं ले जाती। श्रोताओं, प्रकृति से हमें

करने की जरूरत है। हर सुबह सूरज अपने नियत समय पर उगता है, हमें रोशनी देता है और अपने नियत समय पर डूब जाता है। हर दिन का एक कार्य उसे कभी थकाता नहीं, नदियाँ कभी बहना नहीं भूलती। कल कल की ध्वनि से सजा संगीत हमें तरोताजा कर देती है। ऋतुएं अपने समय से आती और जाती हैं, यही सीख प्रकृति हमें देती है। समय का सदुपयोग और अनुशासन कैसे हमारे जीवन को सुंदर और सफल बनाता है, समय को टालना नहीं चाहिए श्रोताओं, क्योंकि कल केवल एक उम्मीद है, जबकि आज एक अवसर इसे पहचानने की जरूरत है।

श्रोता, सदी समय और प्रकृति दोनों एक बार चले जाए तो लौट कर नहीं आते, इसलिए इन दोनों की कदर करना हम सबकी जिम्मेवारी है। पर्यावरण हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, भोजन और जीवन देता है, लेकिन यदि समय रहते हम पेड़ पौधों की रक्षा नहीं करेंगे, पानी की बचत नहीं करेंगे और प्रदूषण को नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। संकल्प ये लेना जरूरी है कि समय का सदुपयोग करेंगे और पर्यावरण की रक्षा को अपनी आदत बनाएंगे। पर्यावरण से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हम सुनेंगे वार्ता। श्रोताओं, विषय है पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिनियम एवं आंदोलन। आलेख है प्रमोद कुमार का, वाचन स्वर कार्यक्रम अधिशासी राजेश कुमार रायकर।

पर्यावरण का हम मानवों के साथ घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में जीवन की पूर्णता प्रकृति के आंचल में ही संभव है। प्रकृति पर्यावरणीय तत्वों से बनी है। इन तत्वों का मानव एवं समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाज के विकास में प्राकृतिक चुनौतियों का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सभ्यता एवं संस्कृति मानव समाज एवं पर्यावरण के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। मनुष्य जब तक प्राकृतिक तत्वों का संयमित उपयोग करता है, तब तक पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता है। वर्तमान में मनुष्य में संयम का अभाव हो गया है। उसने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन तथा अपशिष्टों का वातावरण में तेजी से उत्सर्जन प्रारंभ कर दिया है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की दशा उत्पन्न हुई है। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। विश्व के सभी देश इस समस्या के नियंत्रण की दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं। भारत भी इस दिशा में अग्रसर है। भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आंदोलन हुए हैं। कई तरह के अधिनियम हैं एवं अभिमतों को आगे बढ़ाया गया है, जो विशेष रूप से जल प्रदूषण के नियंत्रण, वायु प्रदूषण के नियंत्रण, वन्य जीवों के संरक्षण एवं वनों के संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण की बात करें तो दो शब्दों के योग से बना है परि जोड़ आवरण। परि का अर्थ परिक्रमा या चारों ओर से है। आवरण का अर्थ घेरे हुए, ढके हुए या आवृत किए हुए से है। इस प्रकार पर्यावरण का तात्पर्य हमारे चारों ओर के उस परिवेश से है जिससे हम घिरे हुए हैं। पर्यावरण वह सब कुछ है जो प्राणी को चारों ओर से घेरे हुए है और उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। यह उन समस्त बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालते हैं। इनमें से कुछ दशाएं प्राकृतिक हैं, जैसे वायु, जल, तापमान, मौसम, भूमि, आर्द्रता, वन, खनिज पदार्थ इत्यादि। कुछ सामाजिक दशाएं हैं, जैसे सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक मूल्य एवं प्रतिमान वगैरह। वहीं कुछ सांस्कृतिक प्रतिमान भी हैं, जैसे धर्म, आदर्श, नैतिकता, भाषा, परंपराएं, जन रीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, आविष्कार वगैरह। इन सभी प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं की संपूर्णता ही

वास्तव में पर्यावरण है। पर्यावरण की अगर परिभाषा हम राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के अनुसार देखें तो मनुष्य के क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों के रूप में पदार्थ एवं ऊर्जा विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को ही प्रदूषण कहा जाता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरणीय तत्वों में होने वाला हानिकारक परिवर्तन है और ये मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्टों द्वारा होता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभिमत अधिनियम एवं आंदोलन की बात करें तो यह सभी का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करें। इस हेतु विभिन्न अधिनियम भी बने हुए हैं तथा कई आंदोलन हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण से जुड़े इन अभिमत अधिनियम एवं आंदोलन को इस रूप में समझा जा सकता है। अगर सरकारी प्रयत्नों की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण विश्व की एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है, इसीलिए विश्व के सभी देश इस समस्या के नियंत्रण की दिशा में प्रयत्नशील रहे हैं। अपने देश भारत में भी इस दिशा में कई कानून बने हैं। लगभग 200 कानून हैं, जिनमें स्वीकार किया गया है कि राष्ट्र, राज्य और नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे पर्यावरण की संरक्षा करें। पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम इस प्रकार हैं: शोरगुल एक्ट 1877, इंडियन फिशरीज अधिनियम 1877, विश अधिनियम 1919, खान एवं खनिज नियंत्रण एवं विकास अधिनियम 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948, उद्योग नियंत्रण एवं विकास अधिनियम 1951, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम 1954, रिवर बोर्ड अधिनियम 1956, पीड़कनाशी अधिनियम 1968, विकिरण संरक्षण अधिनियम 1971, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रक अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1989, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण 1995, ग्रीन ट्रिब्यूनल इत्यादि। भारत के संविधान में भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य और प्रत्येक नागरिक का यह अनिवार्य कर्तव्य किया गया कि वह पर्यावरण की रक्षा करे और उसमें सुधार करे। अनुच्छेद 47 में यह कहा गया है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 अ में वर्णित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। वहीं अनुच्छेद 1500 में वर्णित है कि वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। वास्तव में 1972 में स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, उसमें पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करने तथा मनुष्यों, अन्य प्राणियों, पौधों एवं संपत्ति के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों को रोकने संबंधी कई निर्णय लिए गए। इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रयोजन ऐसे निर्णयों को क्रियान्वित करना है। यह अधिनियम पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण एवं सुधार करने तथा पर्यावरणात्मक प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिए केंद्रीय शासन को शक्ति प्रदान करता है। इस अधिनियम के अधीन इन प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंडल और राज्य स्तर पर राज्य मंडल की स्थापना की गई है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े आंदोलन की चर्चा की जाए तो इसमें चिपको आंदोलन एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन माना जाता है। इसमें सर्वप्रथम अमृता बाई का योगदान रहा, फिर इस कड़ी में बचनी देवी, गौरी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदर लाल बहुगुणा जैसे नाम सराहनीय है। 1972 में इस आंदोलन की शुरुआत बचनी देवी एवं गौरा देवी से माना जाता है। उत्तराखंड राज्य के चमोली के जंगलों को बचाने में गौरा देवी की भूमिका सराहनीय रही। उन्होंने जंगल को अपना घर बताया और अपनी जान की कीमत पर उसे बचाने की कोशिश की। उत्तराखंड वासियों ने इस क्रम में वृक्ष लगाओ आंदोलन की शुरुआत भी की। अन्य आंदोलन में नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा पर डैम के विरोध से संबंधित आंदोलन, गंगा की सफाई से संबंधित विभिन्न आंदोलन भी उल्लेखनीय है। अपने जिले की बात की

0: कहते हैं कि राजनगर प्रखंड की चामी मुर्मू का नाम काफी उल्लेखनीय है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु तो महत्वपूर्ण कार्य किया और उन्हें इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस तरह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानून हैं, अधिनियम हैं और साथ ही साथ विभिन्न आंदोलन भी चले हैं और सबका उद्देश्य है कि हम पर्यावरण की रक्षा पूरे जी जान से करें।
1: श्रोता साथी, आप सुन रहे थे वार्ता पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिनियम एवं आंदोलन। आलेख था प्रमोद कुमार का, वाचन स्वर था कार्यक्रम अधिशासी राजेश कुमार राय का। हम आपको बता दें, इस वार्ता का पुनः प्रसारण किया गया।

श्रोता साथी, पर्यावरण संरक्षण एक शब्द जो है बदलाव का, उम्मीद का, एक बेहतर कल का। जरा सोचिए, अगर पेड़ हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दे, नदियां बहना छोड़ दे, धरती अपनी हरियाली खो दे, तो क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? आत्मनिर्भर भारत की असली नींव सिर्फ उद्योग, तकनीक और व्यापार नहीं, बल्कि स्वस्थ पर्यावरण भी है। जब हमारी मिट्टी उपजाऊ होगी, पानी स्वच्छ होगा, हवा शुद्ध होगी और प्रकृति सुरक्षित होगी, तभी हमारा देश सही मायनों में आत्मनिर्भर बनेगा। जो प्रकृति का सम्मान करता है, वही भविष्य का निर्माण करता है। हरियाली बढ़ाएंगे, स्वदेशी भी अपनाएंगे, पर्यावरण भी बचाएंगे, तो ही आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार बनाएंगे। श्रोताओं, आत्मनिर्भर भारत भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक रूप से अधिक स्वावलंबी बनाना है। इसकी घोषणा 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। श्रोताओं, इस महामारी के दौरान कई लोगों के रोजगार छिन गए थे, कई व्यवसाय बंद हो गए थे। लोगों ने इस दौरान कितनी परेशानियां झेली, ये हम सब ने देखी और महसूस भी की। इस समस्या के समाधान के उद्देश्य से शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले इसके लिए वोकल फॉर लोकल, रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया गया। श्रोताओं, जो उद्योग इस समस्या के बाद भी मौजूद थे, उनके लिए भी सुविधा प्रदान की गई, ताकि नए रोजगारों का सृजन हो और लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए काम की व्यवस्था, आय की व्यवस्था हो सके। साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विकास और डिजिटल तकनीकों को प्रोत्साहित करना, वित्तीय सहायता और नीतिगत सुधार प्रदान करने के लिए MSME को समर्थन दिया गया।

इस योजना में 5 स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया गया श्रोताओं, ताकि ये योजना सफल हो। वे हैं अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिक आधारित व्यवस्था, जनसांख्यिकी मांग। देश की आर्थिक मजबूती बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य ऐसा भारत बनाना है जो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करने में सक्षम हो और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे।

इम्तिहान में फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, शब्द रचना थे मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं इसी के साथ कल कारखाने का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। दीजिए अपनी दोस्त स्नेहलता को अनुमति आप

0: समाचार प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हो रहा था। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जहां लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ गड़ी जाती है और जहां की सुबह दलमा की पहाड़ियों से उतरकर संथाली गीतों की धुन पर मुस्कुराती है, जमशेदपुर उद्योग की राजधानी भी है और खेलों का मैदान भी। ये विज्ञान की प्रयोगशाला भी है और मानवीय मूल्यों की पाठशाला भी। इस पार्क संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी जमशेदपुर की विशेष प्रस्तुति, रविवार 5 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आकाशवाणी जमशेदपुर के न्यूज ऑन EIR ऐप पर सुना जा सकता है।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रस्तुत कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत।
2: कार्यक्रम झारखंड के लोकगीत के साथ आपका दोस्त संजीव हाजिर है। दोस्तों, आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ नागपुरी लोकगीत। कलाकार हैं

झारखंड के लोकगीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं दीना सिंह और साथियों से नागपुरी लोकगीत। लीजिए सुनिए उनकी अगली प्रस्तुति।

झारखंड के लोकगीत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इसके साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को जोहार।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्य वार्ताः। होर्मुज जलडमरू मध्ये इत्यनेन माध्यमेन एलएनजी इत्यस्य जलयान प्रेषणस्य पुनः प्रारंभात् अनन्तरं भारत सर्वकारेण प्राकृतिकवायु आपूर्तौ आपत्कालिकः प्रतिबन्धः निरस्तीकृतः। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियमस्य अंतर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय सहायतां प्रदत्तवान्। केन्द्र सर्वकारेण मेटा संस्थायै इंस्टाग्राम मञ्चात् बाल शोषण संबद्ध विज्ञापनानां निष्कासनस्य आदेशः प्रदत्तः। सहैव 7 दिनेषु स्पष्टीकरणं प्रस्तोतुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अद्य छत्तीसगढ़स्य सुप्रसिद्धा पांडवनी गायिका तीजनबाई दिवंगता। राष्ट्रपतिः उपराष्ट्रपतिः प्रधानमंत्री च तस्याः निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजराते कोंकणे गोवायां मध्य महाराष्ट्रे तथा ओडिशा राज्ये च अतिवृष्टेः संभावनामालक्ष्य रक्तसंचेतना घोषिता। अपि च आईसीसी महिलावर्गस्य 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडा स्पर्धायाः अंतिम स्पर्धा अद्य सायंकाले लंदन नगरे भविष्यति। अस्याम स्पर्धायाम् इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिष्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन द्रवीय प्राकृतिक वायुः आपूर्तिमालक्ष्य आपत्कालिकाः प्रतिबन्धाः निरस्ताः। अयं निर्णयः पश्चिम एशियायां संघर्षे युद्धविरामानन्तरं होर्मुज जलडमरू मध्यमार्गेण प्राकृतिक वायुः आपूर्तेः पुनः प्रारम्भे सति कृतः। पेट्रोलियम प्राकृतिक वात्यन्धन मन्त्रालयेन अधिसूचनायामुक्तं यत् 26,000-तम वर्षस्य प्राकृतिक वायु आपूर्ति नियमनादेशः इत्यस्मिन् संशोधनं कृतम्। अस्मिन् संशोधने तानि प्रमुखानि आपत्कालिकानि प्रावधानानि निरस्तानि सन्ति येषां माध्यमेन प्रशासनं देशे उत्पादितस्य प्राकृतिकवायोः तथा आयातितस्य द्रवीय प्राकृतिकवायोः आवंटने प्राधान्यं दातुम् अनुमतिः आसीत्। होर्मुज जलडमरू मध्यात् द्रवीय प्राकृतिकवायोः आपूर्तौ व्यवधानस्य अनन्तरम् आवश्यकवस्तु अधिनियमस्य अन्तर्गतम् अस्य वर्षस्य मार्च मासे आपत्कालिकाः आदेशाः प्रवर्तिताः आसीत्। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जुलाई मासस्य प्रथम दिनांकात् विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अर्थात बीबीजी रामजी अधिनियम सफलतया प्रभावशील अभवत्। मन्त्रिणा अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं राज्येभ्यः 25,000 कोटिरूप्यकाधिक धनं च प्रदत्तम्। श्रीचौहानेन सर्वेषां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च ग्रामीण विकास मन्त्रिभिः साकं वीबीजी रामजी अधिनियमस्य क्रियान्वयस्य प्रगतेः समीक्षापि कृता। तेन प्रोक्तं यत् अद्य विमुक्तायाः प्रथमांश धनराशेः मुख्यमुद्देश्यं राज्यानां पार्श्वे पर्याप्त निधेः सुनिश्चयनम् अस्ति, येन श्रमिकाणां वृत्तिः 15 दिनानां अभ्यंतरे एव प्रदातुं शक्येत।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बाल यौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतोभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशां सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः 7 दिनानाम् अभ्यन्तरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनक

0: संस्कृत समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है।
3: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
4: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर से अब सुनिए।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा से।

आज की चर्चा से आज हम टीवी मुक्त भारत अभियान की चर्चा करेंगे। किसान श्रोताओं, टीवी मुक्त भारत अभियान भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो टीवी यानी तपेदिक को जड़ से खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक प्रमुख जन आंदोलन है। इस मिशन का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले तक देश से टीवी का उन्मूलन करना है। इस मिशन के तहत निश्चय पोषण योजना चलाई जा रही है। इसके तहत टीवी रोगियों को आज के दौरान पौष्टिक आहार के लिए सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपए दी जा रही है। दूसरी योजना है निश्चय मित्र। ये सामुदायिक सहायता का एक स्तंभ है जहां कोई भी व्यक्ति, संस्था या कारपोरेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत टीवी मरीजों को गोद ले सकता है, साथ ही उन्हें पोषण किट और सामाजिक सहयोग प्रदान कर सकता है। तीसरी योजना है सघन जांच अभियान। इसके अंतर्गत घर घर जाकर टीवी के संभावित मरीजों की पहचान की जाती है और आधुनिक मशीनों के जरिए मुफ्त जांच और इलाज सुनिश्चित की जाती है। तो किसान भाइयों, आप भी इस टीवी मुक्त भारत अभियान से जुड़कर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं और भारत को टीवी मुक्त बनाने में सहयोग कर सकते हैं।

और इस चर्चा के बाद अब कुछ बातें मानव और वन्य जीवों के संघर्षों की करते हैं, जिसे जागरूकता के माध्यम से ही रोका जा सकता है। ग्रामीण भाई बहनों, मानव और वन्य जीवों के संघर्षों को रोकने के लिए कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें प्राकृतिक आवासों का संरक्षण, खेतों और बस्तियों के चारों ओर सोलर फेंसिंग

लगाना और वन्य जीव गलियारों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना मुख्य रूप से शामिल है। किसान भाइयों, खेतों और मानव बस्तियों की सुरक्षा के लिए सौर बाड़ या मधुमक्खी पालन जैसे तकनीकों का उपयोग बेहद कारगर उपाय है। जानवरों की आवाजाही को ट्रैक करने और ग्रामीणों को सचेत करने के लिए आधुनिक तकनीक जैसे AI आधारित निगरानी कैमरे, रेडियो कॉलर आदि का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही जंगलों का विनाश रोकना और प्राकृतिक आवासों को बहाल करना ताकि जानवरों को भोजन और आश्रय के लिए बाहर न आना पड़े। जंगलों से गुजरने वाले हाईवे या रेलवे ट्रैक के अंडरपास और ओवरपास का निर्माण कर भी इस पर रोक लगाया जा सकता है।

और अब कुछ बातें धान के बिचड़ों का प्रबंधन की। किसान भाइयों, धान के बिचड़ों का बेहतरीन प्रबंधन बेहतर पैदावार की पहली सीढ़ी है। बीज उपचार से शुरुआत करें, क्यारियों में नमी और पानी का संतुलन बनाए रखें, समय पर उर्वरक दें और 20 से 25 दिन के स्वस्थ बिचड़ों को ही आप रोपें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें किसान भाइयों, धान का बिचड़ा आमतौर पर बुआई के 18 से 20 दिन के भीतर रोपाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। इसे और मजबूत और तेजी से तैयार करने के लिए किसान वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान के बीजों का उपचारित करने से रोगों से बचाव होता है और अंकुरण की क्षमता बढ़ती है। इसके लिए सबसे पहले स्वस्थ बीजों को नमक के घोल से छांट लें, फिर फफूंद नाशक से उपचारित करें और अंत में बुआई के लिए अंकुरित करें। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई धान के बिचड़ों का प्रबंधन कर धान की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।

और अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है ई श्रम पोर्टल ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान। भेंट वार्ताकार हैं श्री राजेंद्र पाढ़ी, जो शिक्षा अधिकारी केंद्रीय सम्यक शिक्षा बोर्ड जमशेदपुर के हैं। आइए इनसे बातें करते हैं।

0: ग्रामीण श्रोता मित्रों, आज हमारी बातचीत हो रही है राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एवं विकास बोर्ड साक्षी के प्रांगण में यहाँ के शिक्षा अधिकारी श्री राजेंद्र पाढ़ी जी से, जिनसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय इनके विकास बोर्ड में कौन कौन सी योजनाएं ग्रामीण श्रमिकों के लिए और खेतीहर मजदूरों के लिए चल रहे हैं, ताकि आप इनकी जानकारी से लाभ उठा सके। तो सबसे पहले पाढ़ी जी, आपका नमस्कार।
1: नमस्कार
0: पाढ़ी जी, आप बताएं कि आप ग्रामीण श्रोताओं को और यहाँ जो खेतों में काम करते हैं या कारखानों में काम करते हैं, उन मजदूरों के लिए क्या क्या योजनाएं केंद्र सरकार ने अभी जारी की है?
1: वैसे तो बहुत सारे योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है, और जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो श्रमिक को स्कीम्स के बारे में जागरूक करना और उनको राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताना, इसके साथ साथ ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो योजनाएं जारी हुई है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना। फिलहाल अभी एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है कि एक ग्रामीण श्रमिक को जानना है उसको, कि ई श्रम के बारे में जानकारी।
0: जी,
1: ई श्रम एक ऐसा चीज़ है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक है उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है।
0: जी,
1: और एक श्रमिक को ऐसा

0: जानकारी होना चाहिए कि मेरा नाम एज ए असंगठित श्रमिक के नाते मेरा नाम उस पोर्टल में पंजीकरण हो। उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए बस दो चीज़ की ज़रूरत है। एक है आपकी आधार कार्ड, दूसरा है और आधार लिंक के साथ आपका मोबाइल नंबर। अब कोई एक सचेतन जो स्मार्टफोन यूज कर सकता है, वो खुद अपने घर में बैठकर भी अपनी स्मार्टफोन के माध्यम से अपने नाम ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण कर सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकता
0: उसके लिए आयु सीमा जो निर्धारित किया गया है असंगठित श्रमिक के लिए, वो है 16 से 59। ये वर्ग के जो श्रमिक है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करें,
1: जी
0: और हमारे देश तो कृषि प्रधान देश है, उसमें ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
1: जी
0: ये सारे श्रमिक उसमें अपना नाम पंजीकरण कर सकते हैं।
1: अच्छा पाठी जी, जिनका नाम इसमें पंजीकृत हो गया तो उनको क्या-क्या फायदे मिलेंगे?
0: ये आज के दिन में सरकार ये चाहती है कि श्रमिक पहले असंगठित श्रमिक का एक डाटा बस बन जाए। डाटाबेस के साथ साथ आज अगर आ, आ, किसी भी योजना के लिए, कोई भी श्रमिक वर्ग के लिए, योजना के लिए उसकी संख्या जानना सरकारी के लिए बहुत जरूरी है। प्रखंड के हिसाब से, जिला के हिसाब से, राज्य के हिसाब से, उसी के बाद बहुत सारे स्कीम्स उसमें धीरे धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। आज के दिन में अगर आप कोई श्रमिक ये ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण करती है, तो जो कहेंगे हम लोग, किसी भी भगवान ना करे कुछ हुआ तो उनको 1 लाख रुपए तक की, अगर आंशिक विकलांग होते हैं तो 1 लाख रुपए तक की सुविधा है, और आंशिक मृत्यु या स्थायी विकलांग के मामले में 2 लाख रुपए तक की व्यवस्था है। और पंजीकरण के बाद प्राप्त हुई ई श्रम ये पूरे देश में लागू है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवरेज नियम के हिसाब से मैंने जो 2 लाख और 1 लाख के बारे में बताया है, आने वाला दिन में ई श्रम जो पोर्टल है वो एक ई श्रम ऐप भी बन रहा है, और
1: जी
0: उसमें बहुत सारे स्कीम्स थ्रू ई श्रम ही आने वाला दिन में एक्टिव हो जाएगा।
1: एक्टिव हो जाएगा।
0: तो इसीलिए पहले हम एक ग्रामीण श्रमिक या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक के नाते पहले हम ये इंश्योर करें, पहले ये कंफर्म हो जाए कि मेरा नाम पंजीकरण है। एक चीज और मैं यहाँ सब श्रोता बंधुओं को बोलना चाहूंगा कि जब आप ई श्रम पोर्टल में पंजीकरण करते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि हम जब थ्रू सीईसी पंजीकरण करते हैं, उसमें
1: जी
0: बहुत सारे गलतियां हो जाता है।
1: जी
0: गलतियां इन द सेंस, मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ,
1: जी
0: मेरा पंजीकरण में मेरा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मेरा जीविका जो है उसी ऑक्यूपेशन रिलेटेड होना
1: होना
0: चाहिए।
1: चाहिए बिल्कुल।
0: मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं कृषि क्षेत्र से हूँ।
1: जी
0: मैं अगर गांव में हूँ, मैं ड्राइवर करता हूँ, तो मेरा ऑक्यूपेशन ई श्रम पोर्टल में ड्राइवर के नाते पंजीकरण होना
1: होना
0: है।
1: चाहिए।
0: अगर मैं गांव में एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं अगर घर में बैठ के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ ट्यूशन पढ़ाने वालों के लिए भी एक ट्यूटर करके एक ऑप्शन है।
1: है
0: तो यहाँ हम लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है कि मेरा ऑक्यूपेशन जो है, या मैं जो करके उसको आने वाला दिन में करना चाहता हूँ, मेरा जीविका
1: जी
0: बढ़ाना चाहता हूँ,
1: जी जी
0: तो उसी से रिलेटेड ही ऑक्यूपेशन में ई श्रम में अपना पंजीकरण करने के वक्त करूँ,
1: करो,
0: ये जरूरी है।
1: ये जरूरी है। तो श्रोता मित्रों, आपने जाना कि किस तरह आप ई श्रम पोर्टल में अपना डिटेल्स डाल करके आप पंजीकृत हो सकते हैं और सरकार की कई योजनाओं का आने वाले दिनों में आपको इसका लाभ मिलेगा। पाढ़ी जी, और भी आप कुछ बताना चाहते हैं हमारे श्रोता मित्रों को?
0: कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये बताने की इच्छा रखता हूँ
1: जी
0: कि कृषि क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे ऐसे सुविधाएं हैं, लेकिन और कृषि कृषि से अनुसंगिक क्षेत्र जो कहते हैं, मान लीजिए कोई उसमें बी कीपिंग या
1: जी
0: मधुमक्खी पालन करना
1: जी
0: चाहता
1: जी
0: है, तो उसमें अगर रुचि है तो गवर्नमेंट का जो स्कीम से उसी से फायदा ले सकते हैं।
1: जी
0: तो लेकिन मेरा रुचि उसमें है, मैं वो करना चाहता हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन वो है, सरकार के पास ये डाटा होना चाहिए,
1: होना चाहिए।
0: तभी जाके मान लीजिए कोई भी एक प्रखंड ले लीजिए, वहीं से इस तरीके की कुछ

0: स्पेशलाइज्ड जिसको हम कहते हैं, अगर श्रमिक इकट्ठे होते हैं उनका डाटा मिलता है तो सरकार उनके लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम के लिए,
1: जी
0: चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई स्पेशल प्रोग्राम लाने में बहुत सहूलियत होगा
1: होगी
0: उनको।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जानकारी आप दे रहे हैं पाठी जी। अभी वर्तमान में कोई इस तरह का स्कीम चल रहा है क्या?
0: हाँ, अभी हमारे विभाग के माध्यम से, जिस विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास बोर्ड के माध्यम से,
1: जी
0: आज के दिन में हम दो ऐसे ब्लॉक चुने हुए हैं, जैसे आदित्यपुर गम्हरिया हुआ सरायकला खरसवांडी जिला का,
1: जी
0: और पूर्वी सिंहभूम का डुमरिया, ऐसे दो, लुमरिया एक प्रखंड है,
1: जी बिल्कुल
0: उसमें प्रखंड में हमारे जो वॉलंटियर्स है,
1: जी
0: जो स्वेच्छासेवी है,
1: जी
0: वो गांव में ये रजिस्ट्रेशन कम अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। मेरा इस दो प्रखंड के जो आदिवासी है
1: जी
0: या और कोई भी हो, जो हमारा कैंप चलता है, वो जो हमारा स्वेच्छासेवी लोग जाते हैं, वॉलंटियर, ट्रेंड वॉलंटियर, वो लोग लोगों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, निःशुल्क होता है,
1: बिल्कुल
0: और उसमें सारा बेनिफिट्स क्या क्या है ये सारा चीज़ बताया जाता है।
1: जी
0: आने वाला दिन में हम और सारा कैंप्स और सारे ब्लॉक्स में भी,
1: जी
0: प्रखंड में भी करने के लिए ये प्लान बनाए हुए हैं, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में शुरू हो जाएगा। और इस कैंप में आप निःशुल्क, मतलब आप आ सकते हैं, उसी में आप जानकारी ले सकते हैं, और खुद अपना नाम कैसे पंजीकरण करना है आप खुद भी कर सकते हैं,
1: जी
0: और हमारे वॉलेंटियर भी आपको
1: आपको
0: मदद
1: मदद
0: करेंगे।
1: करेंगे। जी बहुत ही अच्छी जानकारी राजेंद्र पाढ़ी जी आपने दिया हमारे ग्रामीण श्रोताओं के लिए और ग्राम गांव में रहने वाले वैसे सभी लोगों के लिए जो कोई न कोई व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, वो ई श्रम में अपना व्यवसाय के साथ पोर्टल में आप पंजीकृत करा सकते हैं और उनके लिए उनके आंकड़ों के अनुसार सरकार योजनाएं बनाएंगी और फिर वो इसका लाभार्थी होंगे। तो इस जानकारी के लिए आपको पाढ़ी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: ई श्रम पोर्टल ग्रामीण मजदूरों के लिए वरदान, ये भेंट वार्ता अभी आप सुन रहे थे श्री राजेंद्र पाढ़ी से जो शिक्षा अधिकारी केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक मैथिली लोकगीत।

और अब कुछ बातें वन महोत्सव की। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान देश भर में व्यापक तौर पर पौधरोपण का कार्यक्रम चल रहा है। ग्रामीण श्रोता मित्रों, एक नारा देश में लगातार सुनाई पड़ती है, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, बारिश लाते हैं और धरती के तापमान को संतुलित रखते हैं। किसान भाइयों, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को सोखते हैं और हमें ताजा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ों की छाया और वाष्पीकरण की प्रक्रिया से आसपास का तापमान कम रहता है और गर्मी से राहत मिलती है। इसलिए हमें इस मानसून के मौसम में अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। और अंत में कुछ बातें बारिश के मौसम में कृषकों के स्वास्थ्य की। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में कृषकों के लिए खेतों में लगातार काम करने से उन्हें मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया और लेप्टोस्पाइरोमिस जैसी जल जनित मच्छरों से होने वाली बीमारियां होने का खतरा रहता है। उन्हें ज्यादा देर तक गीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे में हमारे कृषक भाई खेत में काम करते समय हमेशा गमबूट और वाटरप्रूफ दस्ताने पहने, जिससे पानी और कीचड़ के संपर्क में आने से त्वचा और पैर सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करेंगे और हम फिर मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम में।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉ

0: श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप, कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर विश्व प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति 2026 तथा झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के ड्राफ्ट जारी कर हितधारकों को और आम जनता से सुझाव मांगे हैं। दोनों ड्राफ्ट झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं। सरकार का कहना है कि व्यापक सुझाव के आधार पर नीतियों को अंतिम रूप देकर राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन इसके बावजूद कई महान राष्ट्रनायकों के योगदान को जनता तक नहीं पहुंचाया गया। श्री वर्मा आज रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एकता और अखंडता की रक्षा के जम्मू काश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के विषय को लेकर भारत माता के चरणों पे अपने प्राणों की आहुति चढ़ाई, जिस व्यवस्था ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि आज के राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान लोगों के योगदान के बारे में जानकारी नहीं रखते।
0: इधर कांग्रेस पार्टी के नेता और लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत ने कहा है कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तभी से ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर से आम जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है।
2: देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे सब अभी हमारे हैं, चाहे नीट की बात करें, अभी जो आम उपभोक्ता एथनॉल की बात करें या फिर राम मंदिर की जो चोरी की बात करें, इन मुद्दों पे सरकार ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की चीजें लाती है। देश के समक्ष बहुत सारी जो कठिनाइयां हैं उन बातों को प्राथमिकता से लेनी चाहिए, लेकिन सरकार इस प्रकार के एजेंडे वो सेट करती है।
0: भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत पलामू जिले में आज निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की उपस्थिति में जन प्रतिनिधियों और मार्क वोटरों के गणना प्रपत्र EF को भरवाया गया। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी, स्थानीय विधायक आलोक कुमार चौरसिया और पांकी के विधायक शशि भूषण समेत अन्य मार्क वोटरों को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने कहा है कि उनकी पार्टी के जिला और जमीन स्तर के नेता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाई जा रही SIR प्रक्रिया के दौरान BLO के साथ तालमेल बिठाकर बूथ स्तर तक वोटों की सक्रिय रूप से मदद करेंगे। श्री राजू आज रांची में पार्टी की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
3: क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। हम सब 20,000 BLS को अपॉइंट किया और सभी को भी बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया। हम ब्लॉक संवाद ऑर्गेनाइज करके सभी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी मेंबर्स और BLS को बुला के ट्रेनिंग दिया। मेरा विश्वास ये है कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी तरह SIR प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे।
0: केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने सरकारी सेवा से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष रखने में रचनात्मक भूमिका के लिए कर्मचारी संगठनों की सराहना की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने लोहरदगा जिले के किस्को और पेशरार प्रखंड में आज ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आयोग के कामकाज की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति के लोग उत्पीड़न या किसी भी समस्या की शिकायत आयोग में कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आयोग जनजाति समुदाय की रक्षा कवच है और समाज के संरक्षण के लिए पूरे देश में काम करता है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @ AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @ AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज

0: रांची इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग के बड़कट्ठा अंचल स्थित मौजा बेरो कला की 117.68 एकड़ विवादित जमीन मामले में 118 रैयतों को अंतरिम राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत ने बरही के अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से रैयतों की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य पक्षों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। झारखंड में भ्रष्टाचार के दर्ज मामलों में पिछले 3 वर्षों के दौरान कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में राज्य में भ्रष्टाचार के 67 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2023 में ये संख्या घटकर 55 रह गई जबकि वर्ष 2024 में मामूली बढ़ोतरी के साथ 58 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 2022 की तुलना में राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में कुल मिलाकर कमी दर्ज की गई है। रांची के धुरबा में भगवान जगन्नाथ का ऐतिहासिक रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू होने वाला है। रथ यात्रा और मेले के सुचारू संचालन के लिए आज मंदिर न्यास समिति, पुलिस प्रशासन और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बैठक हुई। बैठक के बाद अपर पुलिस महानिदेशक मनोज कौशिक ने बताया कि रथ यात्रा और मेले की सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
2: मुख्य तौर पे रथ यात्रा का पूरा रूट है उसको सैनिटाइज करना है, प्रॉपर बैरिकेडिंग करवाना है ताकि रथ यात्रा के बीच में कोई भी किसी तरह का हादसा नहीं हो। उसके साथ साथ वॉलंटियर्स हैं उनका ऑप्टिमल यूज हो पूरी यात्रा को सुखद बनाने के लिए, तो वही सब व्यवस्थाओं पे आज चर्चा हुआ है और उसका अब एग्जीक्यूशन हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे।
0: मौसम विभाग ने राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में 9 जुलाई तक बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना जताई है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित रांची जिला जूनियर वुशु प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विद्यालयों और क्लबों के लगभग 100 जूनियर खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम कल और परसों हैदराबाद के गच्ची बावली स्टेडियम में आयोजित जूनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई है। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में अभ्यास के बाद टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG आपूर्ति पर लागू आपातकालीन प्रतिबंध हटाए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से आपूर्ति सामान्य होने के बाद निर्णय। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 नई नीतियों का ड्राफ्ट किया जारी। हितधारकों और आम जनता से मांगे सुझाव। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर राष्ट्रनायकों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कांग्रेस ने किया पलटवार। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में 9 जुलाई तक बारिश, वज्रपात और तेज हवा चलने की जताई संभावना। और रांची में आयोजित जूनियर वुशु प्रतियोगिता के विजेताओं को किया गया सम्मानित। झारखंड की अंडर 18 बालिका रग्बी टीम का कल से हैदराबाद में मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: पलामू जिले के सदर प्रखंड के पोखरा और जोड़ में ओवरब्रिज बनाने और हाईवे निर्माण पूरा होने तक जोरकट में टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने किया। यहां उन्होंने कहा कि यह स्थान ब्लैक स्पॉट बन गया है। इसी महीने 3 लोगों की दुर्घटना में मौत हुई है।
2: सैकड़ों भैंसों कार्यकर्ता लाइव ग्रुप में यहाँ बैठे हुए हैं, इस मांग को लेकर कि यहाँ पर पांकी से, चतरा से, हजारीबाग से प्रतिदिन 11 गाड़िया इस सड़क से गुजरती, इस चौक से गुजरती, और जितने लोगों का इस 8-10 महीने में एक्सीडेंट में डेथ हुआ वहाँ से ज्यादा लोगों को जाने हैं। तो आने वाले समय में लोगों को जान नहीं देना पड़े अनावश्यक रूप से, यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए और फ्लाईओवर बना करके वो अपना सो अपने मान को ये नचाई पर पार करे, इस क्रॉसिंग से नहीं जाए।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावा की चोरी में संलग्न सभी तत्वों को जेल भेजा जाएगा। वह डाल्टनगंज में परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
3: सरकार किसी के जो किसी के राज में किसी को चोरी करने की छूट नहीं है, चोरी किया आज जेल के अंदर में जो है और जेल में कड़ी से कड़ी सजा आपको मिलेगी, और जो दोषी होगा वो जेल जाएगा।
1: 25 जून को आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भाजपा ने संविधान हत्या दिवस मनाया। मेदिनीनगर के नगर भवन में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व सांसद इंदर सिंह नामधारी, पलामू के सांसद वीडीराम सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहां प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि
4: संविधान के हत्यारे जिसे देश पर न्याय अत्याचार करने का काम किया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से लेकर अन्य लोगों का अधिकार को सीमित करने का काम किया गया, और संविधान में भी न्यायपालिका जो अधिकार था समीक्षा करने का बीच बीच में उससे भी प्रतिबंध लगाने का काम किया गया कि मीसा जिसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी प्रमुख आदमी सामाजिक काम कर रहा है, कोई अपराध नहीं किया है। संविधान की हत्या किसने करने का काम किया? जिसने कोई जुर्म नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उसको जेल के अंदर जाने का काम करना पड़ा।
1: झारखंड के पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा पलामू पहुंची। यहां उन्होंने समीक्षा बैठक की, विधि व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में पलामू, गढ़वा, लातेहार के SP भी उपस्थित थे। बाद में तदाशा मिश्रा ने कहा कि
5: देख रहे हैं कैसा यहां पर स्थिति है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या स्थिति बिहार है, ये सब रिव्यू हो रही है। ये रूटीन मैटर है, कोई विशेष हम लोग जिला वार रिव्यू कर रहे हैं। गढ़वा है, पलामू है, नंदा है, लातेहार, एक एक जिला का सब चीज देख रहे हैं। काम अच्छी हो रही है, तीनों को नए हैं और यंग है, हार्ड वर्किंग है। जमीन का जो प्रॉब्लम है वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है, मेनली डिसीजन जो है उन लोगों के स्तर से लिया जाता है।
1: पलामू के हुसैनाबाद शहर के जपरा रेलवे स्टेशन रोड स्थित मां दुर्गा मंदिर में चोरी हो गई। ये वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
0: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन और जिले में आजकल प्रसारित हो रहा था आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.4 MHz पर। शाम के 7:15 हुए हैं।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:30 पर हम आपको अपने दिल्ली के नजर चलेंगे, जहां से आप ICC महिला T20 विश्व कप के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। समय याद रखिए, शाम 7:30। आकाशवाणी जमशेदपुर से इस समय सुनिए बांग्ला कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से, और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी BMC के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गयी। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और

0: आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
4: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि, 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि

0: जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रोजाना छाया गीत के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है,

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती दो लाइन चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
3: आज के फन

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं। लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष भूमिका

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के प्रधानकारी प्रभाज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: मनचाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: बारिश के साथ जैसे छा गई है उदासी की धुंध, आसमान जैसे बरस रहा है, और दुनिया के जितने उदास लोग हैं यह आसमान उनका साथ दे रहा है। यह आसमान उनकी जुबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

कभी-कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर। कभी

कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी जमशेदपुर का विविध भारती केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:55 पर पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।